0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா.

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। हाजिर हम अपने दैनिक प्रसारण को लेकर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। हिंदी समाचार आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1 लाख करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत

0: किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

आज का युग प्रतियोगिता का युग है। सबके सब मानो दौड़ लगा रहे हैं और हर आदमी येन केन प्रकारेण दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भाग रही है और सबको मंजिल तक पहुंचने की भीषण हड़बड़ी है। नियम कायदे कर्तव्य की किसी को चिंता नहीं, बस गंतव्य तक पहुंच जाना है चाहे जैसे भी हो। रास्ते की महत्ता तो खत्म हो गई, मगर यह सही दृष्टि नहीं है। कल्पना करें कि दो आदमी नदी में बहे जा रहे हैं, एक सिर्फ हाथ पैर फेंकने की धुन में है और जल्दी ही जल्दी किनारे तक पहुंच जाना चाहता है, जबकि दूसरा बहा भी जा रहा है और अगल बगल के परिवेश को देखता भी जा रहा है। उसके लिए मंजिल तक किनारे तक पहुंचना ही काफी नहीं है, रास्ते की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मगर आज के यांत्रिक युग में रास्ते को महत्व देने की न तो किसी को इच्छा है, न अवसर, न उतनी फुर्सत। बस दो चार हाथ मारे और किनारे लगे। यह आदमी सफल आदमी तो कहला सकता है, पर ज्ञानी नहीं। आज विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यह अराजकता सबसे ज्यादा है। छात्रों को अध्ययन में कोई रुचि नहीं, वे तो जल्द से जल्द परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं, गेस पेपर, प्राइवेट ट्यूशन आदि के शॉर्टकट से। शिक्षकों को भी न तो छात्रों को ज्ञान देने में कोई रुचि है, न फुर्सत। वे तो कोचिंग वगैरह के रूप में दुकान खोले बैठे हैं। हर तरह का इंतजाम है वहां छात्रों को शॉर्टकट से परीक्षा की वैतरणी को पार कराने के लिए। इसलिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ग्रेजुएट उत्पादित करने वाली फर्म कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसकी तुलना संसार के किसी भी धन से नहीं की जा सकती है, पर इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन। पर डिग्री पाने की लालसा में भ्रमित छात्र अध्ययन जरा भी नहीं करना चाहते। ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लंबा है, परिश्रम की मांग करता है। महाभारत में एक बड़ी रोचक और प्रासंगिक कथा है। यवकृत नामक एक ऋषि कुमार बिना अध्ययन किए अनायास वेदों का प्रकांड ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर इंद्र को उसके समक्ष आना ही पड़ा। उन्होंने उसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा और जब ऋषिपुत्र ने उन्हें अपनी अदम्य लालसा बताई तो इंद्र ने उसे बहुत समझाया कि विद्या वरदान से नहीं मिलती, उसके लिए तो अध्ययन करना चाहिए। पर वह तो तुरंत फुरंत बिना परिश्रम किए विद्वान होना चाहता था, उसे इंद्र की सलाह भला क्यों अच्छी लगती। वह तपस्या में लीन रहा। एक दिन यवकृत समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी में बालू भर भर कर समुद्र में फेंक रहा है। यवकृत के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा कि ऐ बाबा, तुम यह क्या कर रहे हो?

बूढ़े ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, असल में मुझे समुद्र के उस पार जाना है। बालू इसीलिए समुद्र में फेंक रहा हूं कि यह भर जाए तो मैं पार कर सकूं। यवक्रीत को लगा कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो गया बाबा? मुट्ठी भर बालू से तुम समुद्र भर दोगे? बूढ़े ने, जो स्वयं इंद्र थे, छूटते ही कहा, हे ऋषिपुत्र, जब तुम बिना अध्ययन किए सिर्फ तपस्या करके चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता बन जाने का दुस्साहस पाल सकते हो, तो मैं मुट्ठी मुट्ठी बालू डालकर समुद्र क्यों नहीं भर सकता? ऋषिपुत्र को मानो ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन तपस्या छोड़कर वह अध्ययन चिंतन में लग गया। कहने का तात्पर्य यह कि हर काम उचित तरीके से ही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने मात्र से पूरा नहीं हो जाता। बिना विषयों के गहन अध्ययन के डिग्री मिल सकती है, ज्ञान नहीं।

0: आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: शेरों वाली माँ, सिंह पे सवार अष्टभुजी माता वैष्णो देवी के संसार में अपार भक्त हैं, परंतु भक्त शिरोमणि श्रीधर का नाम सबसे ऊपर है। इस अनोखे भक्त ने अपनी सांसों की माला के हर मोती में अंबा भवानी माता वैष्णो देवी की पावन मूरत मन में बसा ली थी। श्रद्धा और आस्था के अमृत में रची भक्त श्रीधर की कथा जन जन के कल्याण के लिए है।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग।
1: एपिसोड 46, 46।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कान का आज का भाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के तहत आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग स्वास्थ्य वार्ता। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:20 पर। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीत संगीत का। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जैसे हम रिले करेंगे अपने राज्य केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय। इस कार्यक्रम का आप सुनेंगे भाग 3। 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिसे हम रिले करेंगे अपने मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 1:20 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 3 बजे से पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 4:02 का समय होगा, फिर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। संध्या 5 बजे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार। संध्या 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 5:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 6:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जानकार। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुनेंगे 7:30 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी चाहत। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारत के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:54 हुए हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: ताम ताम प्रवाचकः जतिन शर्मा अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारम्भो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः सामाजिक सहभागितायाः सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादकमुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोर दण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, दशकोटिरूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिक राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभंग प्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
0: राज्यसभायां 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय, सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद्धेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावड़यात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति।

0: अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश सर्वकाराभ्याम् व्यापक प्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7 बजे हैं, कुछ ही पल में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लोक रंग में आज आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। आवाज शारदा सिन्हा की।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 में हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय है क्लब फुट, कारण, लक्षण एवं बचाव। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर कुमार सत्यम, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। भेंट करता है अशोक कुमार।
1: श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में हमारे बीच हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन कुमार सत्यम। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार आप हमारे श्रोताओं से मुखातिब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, साथ ही साथ नमस्कार।
2: बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आज का जो हमारा विषय, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, एक बहुत बड़ी समस्या है। कहे कि माताएं 9 महीने बच्चों को अपने गर्भ में रखती हैं और उसके बाद अगर बच्चों में कुछ विकृतियां पाई जाती हैं, वो विकृतियां कहीं भी किसी भी मतलब कि शारीरिक रूप में आती हैं, मेंटल से लेकर के पांव तक हर चीज कहीं भी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। आज के कार्यक्रम में हम जाना चाहेंगे कि पांव में कभी कभी टेढ़ापन आ जाता है बच्चों का, तो ये भाई माता पिता के लिए बहुत ही मतलब दुखद क्षण होता है और ये बच्चे को कैसे संभाला जाए, इसी पर आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि पांव में दरअसल टेढ़ापन किस वजह से होता है, कारण, लक्षण और बचाव विषय पे। पहले ये बताया जाए कि पांव में टेढ़ापन ये क्या है, कौन सा रोग है और ये कौन से बच्चों में ये इसके संभावना होती है, बताएं।
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। पांव में टेढ़ापन तक का जहां तक का बात है, जो सबसे कॉमन बीमारी होता है उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्लब फुट बोलते हैं, या और टेक्निकल बोला जाए तो कॉन्जेनाइटल टेरिपस इक्वेनो वायरस या CTV बोलते हैं। तो ये क्लब फुट का मतलब होता है जो गोल्फ में हम लोग डंडा यूज करते हैं उसका आगे का जो शेप रहता है वो क्लब जैसा रहता है। हाँ। उसी के हिसाब से बच्चों का भी पैर क्लब मतलब उसी के हिसाब से टेढ़ा हो जाता है
1: जी।
2: तो इसीलिए उसका नाम हम लोग क्लब फुट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्यों है, तो इसका दो कारण है। अभी तक इसको हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, अभी तक पूरा कारण ये हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग 100% श्योर नहीं है कि आखिर ये क्यों हो जाता है
1: जी।
2: लेकिन जो सबसे कॉमन कारण जो हम लोग पाए हैं वो ये है कि जब बच्चा अपने माँ के कोख में रहता है तो कोख में वो चारों तरफ से अंदर से दबा हुआ होता है। तो ये दबने के कारण चाहे वो ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड मतलब ज्यादा पानी भर जाए, उसके कारण कभी कभी पैर उनका दब जाता है, तो पैर दबा हुआ ही रह जाता है और वो पैर टेढ़ा हो जाता है, तो इसको हम लोग क्लब फुट बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो जब कई बार बच्चा पैदा होता है तो लोग देखते हैं कि हाँ भाई उसका जो पैर है, नीचे का पैर है, वो टेढ़ा हो रखा है। एक पैर तो ठीक है, दूसरा पैर टेढ़ा हो रखा है। कई बार 50% केसेस में दोनों के दोनों पैर टेढ़े होते हैं। तो इसका कारण यही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% श्योर है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जब माँ के कोख में बच्चा रहता है उसके दबाव के कारण ही हो पाता है। इसमें जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे का पैर टेढ़ा रहेगा और ये दो तरीके का होता है जो हम लोग बोलते हैं, टेक्निकली इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बोला जाता है। प्राइमरी का मतलब कि बच्चा का सिर्फ पैर टेढ़ा है और बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है पूरे शरीर में, इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं
1: जी।
2: एक सेकेंडरी होता है कि बच्चा का पैर टेढ़ा किसी और डिजीज के कारण हुआ है, इसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे हो सकता है कि उसको कोई नस का बीमारी हो जिसके कारण कि उसका पैर टेढ़ा हो गया हो, तो सेकेंडरी जो है वो बहुत कम कॉमन है। बेसिकली ज्यादातर केसेस में बच्चों को प्राइमरी CTV ही होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे का पैर टेढ़ा होता है, उसको छोड़ करके बच्चा पूर्णतः नॉर्मल होता है, पूर्णतः स्वस्थ होता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ये 9 महीने माताएं किस प्रकार से अपने गर्भ की सुरक्षा करें कि कम से कम ये बच्चों का पांव में टेढ़ापन जो आपने कहा ये जो है सो ना होवे। और एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि 3 महीने के बाद बच्चे का शरीर पूरा ये डेवलप करता है, सब अंग बन जाते हैं, कितने महीने के बाद कितने अल्ट्रासाउंड में ये पता चलेगा कि बच्चे का पांव टेढ़ा है और क्या वो गर्भ में ठीक हो सकता है या फिर डिलीवरी के पश्चात ही ठीक करने को उपाय, इसके बारे में बताएं।
2: बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। इसमें जब बच्चा कोख में रहता है तो 3 अल्ट्रासाउंड हम लोग बोलते हैं कि उसको कराना चाहिए। पहले 3 महीने में जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग बोलते हैं, इसमें बच्चे का अंग बन रहा होता है उस समय ये पूर्णतः पता नहीं चलता। सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब जो दूसरा या तीसरा अल्ट्रासाउंड आप कराएंगे तो उसमें आपको मोटा मोटी ये जानकारी हो जाता है कि हाँ बच्चे का पैर टेढ़ा हो रहा है
1: जी।
2: आप लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं बच्चा के कोख के अंदर, इसका बचाव का कोई ये नहीं है। ये 1000 बच्चों में मूलतः ये होता है, तो कोख के अंदर आप इसका कोई बचाव आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो आजकल इसका इलाज बहुत ही सरल हो गया है। विकासशील देश है या जो अंडर डेवलप्ड देश है वहां में तो डॉक्टर छोड़ दीजिए, नर्स या जो ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट

0: होते हैं उनको सिखाया जाता है और प्लास्टर के माध्यम से, जिसको कि पॉन्सेटी ट्रीटमेंट मेथड बोला जाता है
1: जी,
0: तो प्लास्टर के माध्यम से और एक बहुत ही छोटा ऑपरेशन जिसको कि टेंडो एक्लिस्टिनोटमी बोला जाता है, जिसमें कि टांका वगैरह लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये दो तीन, प्लास्टर और एक छोटा ऑपरेशन और एक इसमें जूते दिए जाते हैं स्पेशल, ये तीन के माध्यम से काफी आसानी से इसका इलाज हो सकता
1: है। भारत देश में ये शुरू हुआ है कि नहीं?
0: भारत देश में ये बिल्कुल शुरू है, सभी जगह शुरू है, हमारे मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ये निशुल्क हर शुक्रवार को सुबह 9:30 से 10:30 बजे किया जाता है, जिससे कि क्योर इंटरनेशनल एनजीओ जो हमारा है उनके साथ हम लोग जो भी वहाँ के डॉक्टर्स हैं ये लोग हम लोग साथ में काम करते हैं और पूर्णतः वहाँ पर फ्री इसका किया जाता है इलाज। इसके इलाज में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे जरूरी ये है, बच्चा का इलाज जितना जल्दी शुरू होगा उतना ज्यादा जल्दी उसका सुधार होगा, उसका ट्रीटमेंट उतना आसान हो जाता है
1: जी। जैसा कि आपने सर कहा कि गर्भावस्था में ही पता अगर चल जाता है, छठे या सातवें महीने में अगर पता चल गया कि बच्चे में है तो क्या तुरंत जन्म के तुरंत बाद जो है सो कितने वर्ष बाद फिर इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए?
0: जन्म के तुरंत, अगर किताबों से हम जाएं तो उसमें कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद इसका, जैसे ही जन्म लिया उसके तुरंत बाद इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग एक सप्ताह का वेट करते हैं
1: जी,
0: कि बच्चा जो है अपनी माँ के पास रहे और उस समय प्लास्टर के लिए भी काफी थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन मूलतः एक सप्ताह के बाद से इसका प्लास्टर हो जाना चाहिए। इसमें 3 या 4 प्लास्टर लगते हैं, एक सप्ताह के अंतराल पर हर प्लास्टर हम लोग करते हैं। 4 प्लास्टर होने के बाद एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसके बाद 3 सप्ताह का प्लास्टर हम लोग रखते हैं, उसके बाद बच्चा का पैर सीधा हो जाता है, लेकिन बच्चा का पैर सीधा रखने के लिए फिर उनको जूते दिए जाते हैं, स्पेशल तरह के जूते होते हैं जो उनको दिए जाते हैं क्लब फुट के लिए, वो बनते हैं, वो भी हम लोग निःशुल्क प्रदान करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, तो वो हम लोग देते हैं। तो वो जूता पहनता है बच्चा जब सोता रहता है, शुरुआत के दिनों में तो 23 घंटे तक पहना जाता है, उसके बाद वो रात में सोते समय पहनता है। तो इससे जो इसका ट्रीटमेंट का परसेंटेज जो है, जो हम लोग पॉन्सेटी मेथड जो हम लोग बोलते हैं उसमें ट्रीटमेंट का परसेंटेज जो है वो लगभग 90% से ऊपर है, कि 100 बच्चों का अगर ट्रीटमेंट किए तो 95% बच्चे एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जैसे आपने कहा ये 3-4 राउंड जो है सो प्लास्टर की प्रक्रिया होती है, तो इसमें बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट की तो आवश्यकता नहीं हो तो माँ के साथ जा सकते हैं?
0: नहीं बिल्कुल, इसको हम लोग डे केयर बोलते हैं। बच्चा आता है, हम सामने प्लास्टर कटवाते हैं, उसके बाद इसका स्कोरिंग करते हैं जिसको कि पिरानी मेथड ऑफ स्कोरिंग बोला जाता है, तो इससे हम पता लगाते हैं, उसका 6 मार्क्स हम लोग देते हैं, तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि कितना बच्चों में सुधार हो रहा है। जैसे बच्चा मेरे पास पहले आया था तो उसका 6 मार्क्स था, अब बच्चा का पैर धीरे धीरे सीधा हो रहा है तो बच्चा का जो स्कोरिंग है वो 3 मार्क्स 2 मार्क्स होते होते 1 पर पहुंच जाता है। तो ये बिल्कुल डे केयर होता है, बच्चा आता है सामने, हम प्लास्टर कटवाते हैं, वहीं पर प्लास्टर करते हैं, बमुश्किल आधा घंटा सामने रखते हैं, उसके बाद बच्चे को छोड़ दिया जाता है, अस्पताल में रहने का कोई भी जरूरत नहीं है, वो बच्चा घर चला जाता है।
1: अच्छा जहां तक आपने कहा कि कारण का अभी कोई कुछ पता नहीं चला है, तो फिर भी केयर ग्रुप में वैसी माताओं को जो प्रेग्नेंट हैं और इस तरह के भविष्य में नहीं चाहते हैं कि कोई भी माताएं, कोई भी अभिभावक नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे का पांव जो है सो टेढ़ा हो जाए, तो उन्हें कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ये 9 महीनों के दौरान?
0: बिल्कुल,
1: ये बताएं क्या कुछ दवाओं का भी सेवन करने से प्रतिकूल असर पड़ता है इस तरह का?
0: प्रतिकूल असर इसमें तो नहीं पाया, कुछ और विकृतियां हैं जो कि दवाई, जैसे कि थैलिडोमाइड अगर पहले दवाई चलती थी जिसके कारण कि हाथ जो है छोटे हो जाते थे, तो अभी तक सर्टेन प्रूफ दवाई से सीटी भी क्लब फुट का तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर जैसे गर्भावस्था में अगर पानी अंदर में ज्यादा हो या ज्यादा प्रेशर हो तो इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। जहां तक इसका बचाव का बात है, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते रहेंगे और सारा जांच करवाते रहेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब कि बच्चे का सिर्फ पैर टेढ़ा है और कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी में उसको और भी दोष रहते हैं। तो अगर बच्चे का पैर दब रहा है तो सिर्फ पैर ही नहीं दबता है, हो सकता है कि और भी अंग दबे हों, तो इसमें इनके जो हिप होते हैं, कुल्हा होता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो बच्चा पहली बार हमारे पास आना इसलिए डॉक्टर के पास जरूरी है कि हम लोग उसका सेकेंडरी जो कारण है, कि सिर्फ बच्चे का पैर टेढ़ा है वहां तक तो ठीक है, कहीं उसके हिप में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं उसके स्पाइनल कॉर्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर माताएं अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उनको शुरू में ये पता रहता है, तो कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसको कि हम लोग उस समय दवाई देकर के रोक सकते हैं। तो इस तरह से सीटीवी का तो आप गर्भावस्था में कुछ नहीं कर सकते, वो जब बच्चा पैदा होगा तभी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके साथ जो बीमारियां आ सकती हैं तो उन पर कुछ ना कुछ हम लोग जो है दवाइयों से कुछ ना कुछ रोकथाम कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक धार्मिक परंपरा के अनुसार या माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसी का मैं बात कर रहा हूँ इसी चीज पे कि सर शायद ऐसी परंपरा है, लोगों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के दौरान जो है सो माताएं कुछ इस तरह से पांव टेढ़े करके बैठी बैठती हैं, तो इस तरह

0: ये जो आपने कहा ये डिजीज होता है, बच्चे होते हैं उनके अकाउंट टेढ़े हो जाते हैं, इस प्रश्न के जवाब में आप क्या कहना चाहिए, कितना प्रतिशत सहमत है इस प्रश्न?
1: नहीं, इसमें जहां तक कि आप लिटरेचर का बात करते हैं, जहां तक कि आप किताबों
0: जैसे डॉक्टर्स तो मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानता है, सीधे से नकार देगा।
1: बिल्कुल,
0: मैं भी
1: मैं भी उसके साथ सहमत नहीं हूँ। अभी तक इसका कोई ये नहीं मिल पाया है कि हाँ भाई किसी चंद्र ग्रहण से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाँ सूर्य ग्रहण से। इसके तीन चार थ्योरिया है, जिसमें से कि एक आपको मैंने बताया, जो सबसे इम्पोर्टेंट हिप्पोक्रेट्स का थ्योरी है, वो यही बताता है कि अंदर में जो है प्रेशर ज्यादा रहता है उसके कारण होता है। कुछ बोलते हैं कि नहीं बोन में खराबी हो जाता है उसके कारण है, कुछ बोलते हैं कि मांसपेशियों में खराबी हो जाता है उसके कारण है। तो कई थ्योरीज है इनकी, लेकिन 100% कंफर्मेशन के साथ अभी तक हमें नहीं पता है कि आखिर ये होता क्यों है।
0: चलिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो आप जैसे थेरेपी देते हैं या जो भी है बच्चों का ऑपरेशन करते हैं, और तो ये क्या ता उम्र के लिए उनका पांव ठीक हो जाता है, या फिर आगे चल के उन्हें कुछ सावधानियों का के इस्तेमाल, बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती है, इसके बारे में बताएं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है कि जब जैसे बच्चे का पैर सीधा होता है, तीन प्लास्टर आप हमने लगाया, उसके बाद ऑपरेशन किया, फिर एक प्लास्टर लगाया, तो पैर मोटा मोटी सीधा हो जाता है, उसके बाद हम जूते देते हैं उनको। तो ये जो इसका दौर है, पैर टेढ़ा होने का दौर है, तो ये 4-5 साल तक इसका जो पैथोलॉजी है वो चलता रहता है। तो इसीलिए बीच बीच में हम लोग इसको बुलाते रहते हैं पेशेंट का पैर चेक करने के लिए, और इनको जूते वगैरह हम लोग देने के लिए बुलाते रहते हैं। तो 4-5 साल तक तो हमको बिल्कुल, अगर पैर सीधा भी हो जाता है बच्चे का, तो 4-5 साल तक हम लोग इसको अपने मतलब प्रोटोकॉल के अंदर रखते हैं, इनको बीच बीच में बुला करके देखते रहते हैं, इनको जूता देते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे का पैर फिर से टेढ़ा होने लगता है, उस स्थिति में हम लोग फिर से उनका इलाज करते हैं। तो 4-5 साल तक बच्चे को केयर करना है, तो 5 साल के बाद ये पैथोलॉजी बहुत हद तक कम हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रोटोकॉल के तहत बीच बीच में बच्चों को बुला करके देखते रहते हैं।
0: खास तरह के जूते जो आपने कहा कि इस्तेमाल, वो वही जूते उन्हें पहनने होते हैं?
1: बिल्कुल वही, उसका एंगल बना होता है, टेक्निकली बोले तो स्टीनबैक जूते उनको कहा जाता है, तो उनका 70 डिग्री का रोटेशन का उसका जूता बना हुआ होता है, वो खास इसी के लिए बनता है, तो वो खास तरह के जूते ही पहनने के लिए दिया जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, ये थे कुमार सत्यम ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसके माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में हमने एक बहुत ही गंभीर समस्या, बच्चे जो होते हैं उनके पांव कर्व हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े जन्म से ही होते हैं, उन्हें किस प्रकार ठीक किया जाए और ये क्यों होता है, और इसकी सुविधा जो है अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो हॉस्पिटल में भी शुरुआत हो चुकी है मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में, अगर आपके घर में भी आस पास पड़ोस में भी इस तरह की समस्या से माताएं जूझ रही हैं तो आप वहां से संपर्क करें। और आज की इस कार्यक्रम में चर्चा के माध्यम से ही हमें पता चला किस तरह की सुविधा उपलब्ध हो गई है, अगर आपके आसपास भी इस तरह की समस्या है तो आप निसंदेह रूप से मेडिकल कॉलेज में से जाकर के संपर्क करें और इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना भेंट वार्ता, क्लब फुट, कारण, लक्षण एवं बचाव। भेंट वार्ताकार थे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार सत्यम, भेंटकर्ता थे अशोक कुमार। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संगीत समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 7:59 हुए हैं। थोड़ी देर में प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है।

0: मतलब सोलर पैनल की, मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
5: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
6: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़

0: रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कम्पोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 379,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट पर करार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में

0: न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री का जोर। 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ समय पर देने के निर्देश। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान ने पूरा किया पहला चरण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। 14वीं जेपीएससी परीक्षा की जांच तेज। सीआईडी ने अभ्यर्थियों से मांगी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी। अभ्यर्थी व्हाट्सएप और ईमेल से भेज सकेंगे ओएमआर कॉपी। श्रावण मास का हुआ शुभारंभ। बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। कांवड़ियों का उत्साह चरम पर। और रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और सभी पात्र उपभोक्ताओं को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने, स्मार्ट ग्रिड, सौर परियोजनाओं और एआई आधारित मॉनिटरिंग प्रणाली को तेजी से लागू करने, जले ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदलने तथा शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पहले चरण का इन्यूमरेशन कार्य 100% पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची प्रकाशित कर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है तथा 5 अगस्त से दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी।
1: एसएआर का इनमरेशन फेज का सभी डेटा डिजिटल कर दिया गया। 5 अगस्त को सभी बूथों पर ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगा। 6 कैटेगरी का व्यक्ति है, उनका जनगणना प्रपत्र नहीं आया, उसी का भी हम लोग सूचीवेश हम लोग पब्लिश करेंगे। किसी का नाम अभी वो इनमरेशन फॉर्म नहीं दे पाया, वो 5 अगस्त के बाद अपने फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन के साथ में देखने के बाद उनका भी नाम छोड़ जाती है।
0: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने की अपील की है। एजेंसी ने कहा है कि अभ्यर्थी कार्बन कॉपी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। सीआईडी का कहना है कि इससे जांच को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसी जांच के क्रम में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की गई। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के कथित विवादित बयान के विरोध में झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष रमा खलखो के नेतृत्व में रांची में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर बयान की निंदा की और इसे महिलाओं की गरिमा तथा सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध बताया।
2: छात्र का जो हित की बात हम लोग कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। विगत 1 महीने से जंतर मंतर में भी आंदोलन हुआ और बहुत ही मजबूरन होकर के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद अभी संसद चल रहा है, एक महिला सांसद होकर के अब शब्द का यूज कर रही है। बच्चियां जो रात दिन पढ़ाई करते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, देश की छात्राओं को वो अपमानित करने का काम कर रही है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में विद्यालय की वार्षिक पत्रिका अरुणोदय का लोकार्पण किया और आचार्य सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुरु समाज और राष्ट्र निर्माण के आधार हैं तथा शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि संस्कारी, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अनुशासन, परिश्रम और नैतिक मूल्यों को अपनाने तथा शिक्षकों से नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाश

0: राजवाड़ी रांची से सुन रहे हैं। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने बताया कि कर्रा गोविंदपुर रोड स्टेशन के बीच स्थित संपार फाटक संख्या HB17 पर ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण 31 जुलाई की रात 10 बजे से 1 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सड़क यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे ने लोगों से असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। श्रावण मास के पहले दिन आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरी बाबा नगरी भक्तिमय माहौल में डूबी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं।
2: सावन के पहले दिन से ही आस्था की नगरी देवघर हर हर महादेव और बोलबम के गगनभेदी नारों से गुंजमान हो उठी है। सुबह से ही बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। पूरी भक्ति और उत्साह के साथ बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुमानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर खुद अपनी टीम के साथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे शहर में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था मिले इस दिशा में हर व्यक्ति यहां लगा हुआ है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का पारंपरिक और विधि विधान से शुभारंभ हो गया। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुमार, आयुक्त संजय कुमार और उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मौसम। झारखंड में मॉनसून फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने रांची समेत 22 जिलों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। रांची, बोकारो और जमशेदपुर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के कारण अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। रांची में खेले जा रहे 135वें डोरंड कप के ग्रुप सी मुकाबले में भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम ने श्रीलंका के डिफेंडर्स FC को 2-1 से हराकर महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। नाउरेम सोमनंदा सिंह ने 1 गोल किया, जबकि डिफेंडर्स की ओर से 1 आत्मघाती गोल भी हुआ। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने नक्सली मिसर बेसरा की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, 2 माह तक 3000 जवानों ने की घेराबंदी, गिरिडीह में गुप्त अभियान चला पकड़ा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राहुल के बयान पर सदन में हंगामा। हिंदुस्तान की लीड है, मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, 24 घंटे निर्बाध बिजली सुनिश्चित करें अधिकारी। दैनिक जागरण ने लिखा है, शराब घोटाला मामले में 3 अधिकारियों को ACB का समन। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री का जोर, 200 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ समय पर देने के निर्देश। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण अभियान ने पूरा किया पहला चरण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। 14वीं JPSC परीक्षा की जांच तेज, CID ने अभ्यर्थियों से मांगी OMR शीट की कार्बन कॉपी। अभ्यर्थी व्हाट्सएप और ईमेल से भेज सकेंगे OMR कॉपी। श्रावण मास का हुआ शुभारंभ, बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें, कांवड़ियों का उत्साह चरम पर। और रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on India's new labor codes by Dr. Pradeep Kumar Jena, Director, Ministry of Labor and Employment. This talk was part of a webinar conducted by the Department of
2: Justice. आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय का तीसरा भाग। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम के लिए आइए आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरोला की आवाजी। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: ग्यावाजी रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरुला की थी। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी। उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरण ते भवन सू आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

शांतनु मोहित्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे की रचना, आवाजें मोहित चौहान और मधुश्री की, फिल्म का नाम वेलकम टू सज्जनपुर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मीट ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजें थी। फिल्म का नाम था एक पहेली लीला। इस गीत को कुमार ने लिखा और धुन बनाई मीट ब्रदर्स अनजान ने।

0: ये था लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना, आवाजें अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की थी। गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और धुन प्रीतम ने बनाई थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

रेखा भारद्वाज, विशाल ददलानी और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे

दोस्तों, आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

0: प्यार का।
1: सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

के बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने। ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो न हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है रिफ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पल में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग, सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए अंजना का नमस्कार। श्रोताओं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य का मनोबल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने मन को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखता है वही सफल होता है। श्रोताओं, बारिश का मौसम हो और सावन की बातें ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। सावन की हरियाली, गरजते बरसते बादल, बारिश की बूंदें बहुत कुछ कह जाती है। कभी चुपके से आकर बरस जाती है, हरे भरे खेत और सावन के झूले गीत बनकर सरगम से होते हुए दिल में उतर जाते हैं। सावन का महीना और सावन के गीत बरसती घटाओं के साथ मन को उत्साह को संचार करते हैं। उत्साहित होकर महिलाएं सावन के गीत गाती हैं, धान की रोपाई करती है। संगीत एक जादू की तरह काम करता है हर सुख दुख में। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, आनंद लेते हैं इस गीत का। फिर होंगी कुछ और जानकारी भरी बातें।

श्रोताओं, मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमानुसार हजारीबाग में आज अधिकतम तापमान होगा 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान होगा 24 डिग्री सेल्सियस। सापेक्ष आर्द्रता 80 से 96 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आज सूर्योदय का समय था सुबह 5:17 और आज सूर्यास्त होगा संध्या 6:34 पर। हजारीबाग झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने खराब मौसम और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और वज्रपात के समय पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे न रुकने की सलाह दी है।

श्रोताओं, मानव तस्करी एक अहम मुद्दा है पूरे विश्व के लिए। यह एक संगठित अपराध है जिसमें हजारों लोग गायब कर दिए जाते हैं। इसके मुख्य कारण हैं गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जागरूकता में कमी, अच्छी नौकरी या बेहतर जीवन के लिए झूठे वादे, झांसा देकर लोगों को बंधक बनाकर उन्हें अवैध कामों में लगाना, बाल शोषण, महिलाओं का शोषण, मजदूरों का शोषण। ऐसी कई कड़ियां हैं जो मानव तस्करी से जुड़ी हुई हैं। यह अपराध आम तौर पर बंधक माफिया, यौन शोषण, बाल श्रम, प्रसव या जबरन विवाह जैसे कामों से होता है। यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। इसे खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में इसके खिलाफ कानूनी और सामाजिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। मानव तस्करी में लोग उन प्रवासी तस्करों के झांसे में आ जाते हैं जो उन्हें विदेश में काम या सुरक्षा का वादा करते हैं और अनियमित प्रवास की प्रक्रिया के दौरान उनका शोषण करते हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि वे अपने परिवार, समुदाय या सरकार की सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के लगभग 92% मामलों में पीड़ित महिलाएं या बच्चे होते हैं। इस मुद्दे की मुख्य चुनौतियां हैं आर्थिक और सामाजिक असमानता। मानव तस्करी को लेकर सरकार की अलग अलग संस्थाओं और राज्यों के बीच समन्वय की कमी का होना, तस्करों द्वारा तकनीकी और डार्क वेब आदि के प्रयोग के कारण प्रशासनिक कार्य में कई बार बाधाएं उत्पन्न भी होती हैं। मानव तस्करों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से अक्सर छात्र अपराधों के शिकार हो जाते हैं। लोगों में जागरूकता आए इसके लिए सामाजिक

पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या स्थानीय प्रशासन को खबर देना। तस्करी से मुक्त होकर लौटे लोगों से भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, उन्हें समाज में सम्मान देना चाहिए। स्थानीय संस्था बनाकर उन्हें सुरक्षा समितियों से जोड़ना भी चाहिए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति बच्चों या गरीबों को बहलाकर ना ले जा सके। श्रोताओं, मानव तस्करी को रोकने के लिए सामुदायिक जुड़ाव बहुत जरूरी है। बातें और भी होंगी, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं आज का इतिहास। 30 जुलाई 1930 को पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे ने उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में जीता था। 1932 में आज ही के दिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन लॉस एंजल्स में हुआ था। इसी दिन 10वें आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 1935 में महात्मा गांधी ने आज ही के दिन अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। 1825 में आज ही के दिन मालदन द्वीप की खोज हुई थी। 1898 में विलियम आर हर्सफोर्ड ने पेनिसिलिन की खोज की थी। 1971 में आज ही के दिन अपोलो 15 के अंतरिक्ष यात्री डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन चंद्रमा पर उतरे थे।

अब आइए जानते हैं 30 जुलाई को जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म हुआ था वे हैं 1882 में सत्येंद्र नाथ बसु। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1886 में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला विधायक एवं सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थी। 1923 में आज ही के दिन गोविंद चंद्र पांडे का जन्म हुआ था। ये 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहास सेवा इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री थे। 1927 में माधव सिंह सोलंकी का जन्म हुआ था। 1945 में नवीन चावला का जन्म हुआ था। ये भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। आज के दिन जिनका निधन हुआ वो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्नीस में विष्णुपद मुखर्जी का निधन हुआ था। ये भारतीय औषध विज्ञानी और आर्थोपेडिक सर्जन थे। 2019 में सुबीर गोकर्ण का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे।

श्रोताओं, वैसे तो जीवन में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव हम स्वयं करते हैं। जहां विश्वास, सम्मान और सहयोग मिले, वही तो है सच्ची मित्रता। हम यूं ही राह चलते किसी को भी मित्र नहीं बना लेते। मनुष्य का यह स्वभाव होता है, जहां अपनापन हो वहां वह जरूर ठहरता है।

जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही मित्र या दोस्त आपस में घुलते मिलते हैं और सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। भरोसे का यह बीज पनपता है और यह वृक्ष में तब्दील हो जाता है। एक वृक्ष फल और छाया दोनों देता है। मित्रता का यह वृक्ष विश्वास, सम्मान और सहयोग की मिट्टी में पनपता है। सच्ची मित्रता एक साधना है जो कई कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, फिर भी साथ खड़े होते हैं। मित्रता एक से हो या मित्र मंडली का ग्रुप हो, यह सद्भाव के भाव को उत्पन्न करता है। दुनिया में आज भी अच्छाई मौजूद है, सच्ची मित्रता में ये नजर आ ही जाते हैं। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। यह हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। यह विशेष दिवस केवल लोगों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृतियों, देशों और विचारधाराओं के बीच भी सेतु का निर्माण करता है। विभिन्नता में भी हम समानता पा सकते हैं जहां दोस्ती का रिश्ता हो। भारत में मित्रता दिवस अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है। श्रोताओं, सोशल मीडिया के इस दौर में

मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन तलाश होती है एक सच्चे मित्र की। मित्र दोस्त, सखा या सखी परखने वाला नहीं, साथ निभाने वाला हो। मित्रता सोच समझ कर नहीं होती, ये तो गॉड गिफ्ट है। जीवन के रास्ते में सच्चे और अच्छे मित्र मिल ही जाते हैं। आप सभी मित्र मंडली को हमारी ओर से इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।

पेपर लीक पर 10 करोड़ तक जुर्माने वाला संशोधन बिल लोस से पारित। 2 माह में जांच चार्जशीट दाखिल होने के 3 माह में फैसला।

ये खबर हजारीबाग की है। उपायुक्त ने बीज, यूरिया व डीएपी बिक्री केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कहा, अधिक कीमत पर उर्वरक बेचा तो लाइसेंस होगा रद्द। बरही के पीएचईडी परिसर में चला सफाई अभियान, दिए गए कई निर्देश।

मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बरही में मेगा विशेष नियोजन शिविर, 90 में से 48 युवाओं का हुआ चयन।

हजारीबाग में 2 लाख से अधिक लोगों पर गहराया जल संकट। डैम में 31 फीट की क्षमता, बचा सिर्फ 9 से 10 फीट पानी। पर्याप्त बारिश नहीं होने से छड़वा डैम में सिर्फ 10 फीट पानी बचा रह गया है।

झारखंड राज्य में मोटे अनाज को बढ़ावा देने तथा इससे जुड़े उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से कृषि विभाग सभी जिलों में मिलेट के कैफेटेरिया खोलेगा। पहले चरण में रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम कैफेटेरिया खोला जाएगा। इसके बाद अन्य जिलों में इसे खोला जाएगा।

ये खबर चित्रकूट की है। मरीजों की सेहत के साथ लोगों की सुधर रही आर्थिक स्थिति। नानाजी देशमुख के शुरू किए गए दादी माँ का बटुआ अभियान से 200 गांवों के लोग हो रहे निरोगी। जापान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। खोज अभी भी जारी है। अमेरिका ने चीन को निशाना बनाते हुए ह्यूमेनाइड रोबोटों पर प्रतिबंध लगाया।

जेपीएससी परीक्षा में चयनित छात्रों को सीआईडी ने जारी किया नोटिस। सूचना जेपीएससी के पोर्टल पर भी जारी। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर मांगी जानकारी। 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच पेपर 1 व पेपर 2 की ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी का मांगा फोटोकॉपी। फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने पर लगेगी रोक। लोकसभा में बिल पेश।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

और इसी गीत के साथ आज के सफर से विदा लेने का वक्त हो गया है। फिर होगी मुलाकात। दीजिए अब अंजना को इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

अशोक भोसले के स्वर में जयशंकर प्रसाद की यह रचना संगीत जयदेव कथा। रंगतरंग कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है महादेवी वर्मा की रचना स्वर छाया गांगुली का।

0: डैडी फिल्म का ये गीत था। तलत अजीज की आवाज थी, सूरज सनीम के बोल राजेश रोशन की तर्ज थी। विविध भारती रंग तरंग, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती।

गुलजार के बोल थे। वादा एल्बम से ये गीत था, संगीत उस्ताद अमजद अली खान साहब का था। अब भूपिंदर की आवाज गूंज रही है गुलजार के बोल।

0: एल्बम का नाम था मैं और मेरा साया, डॉक्टर भूपेन हजारिका की आवाज थी। विविध भारती, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती से बोल रही हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों

आइए सुनिए यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे सफर को बनाएंगे सुनहरा।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थी। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहने आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाते थे, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: परदेश फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

परदेश के बाद अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोइत्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

0: पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आए हाय
0: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल चाहता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे

0: का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की इबारत हमने विविध भारती के सोशल मीडिया पेज पर यानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने पढ़ भी ली है। ये इबारत है, कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो राह भी दिखाते हैं। उस दिन राह दिखाने वाले एक दोस्त ने कहा था, उतना ही उपकार समझ तू जितना साथ निभा दे। बात इशारों वाली थी पर फौरन समझ में आ गई थी। कुछ बहारें बीती और इस एहसास को जीना भी पड़ गया। एक सुरमई शाम थी, उस दिन वो आखिरी बार मिली। वो जता गई कि दुनिया परछाइयों की है, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की है। तब से आंखें नहीं रह गईं, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी बन गईं। प्यार करने वाले तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते, जैसे बख्शी साहब ने लिखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। जिस दिल में बसा होता है प्यार वो यही कहता है, चांद धुंधला सही ये गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया ना हो। शाम की तन्हाइयां अक्सर उसकी याद दिलाती हैं और तब होता है एहसास, मैं शायद एक ख्वाब था जिसे उसने अपनाया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमने पोस्ट की आज की इबारत के तौर पर। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों का साथ निभ नहीं पाया, एक के हिस्से में उदासी आई, शायद दूसरे के हिस्से में भी आई ही होगी।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि आज की इबारत बता देती है कि गाने कौन से शामिल होने वाले हैं बाकायदा। दरअसल गानों की पंक्तियां इस कहानी की पंक्तियां जो बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इस गाने के साथ। क्या तो शानदार ओपनिंग म्यूजिक है इस गाने का जो मेरी आवाज के पीछे आपको सुनाई दे रहा है। किस फिल्म का है गाना ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए दो बातें। एक तो ये कि किस जगह की शाम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। लोग शामें अवध और सुबह बनारस की बात करते हैं, आपके लिए किस जगह की शाम मायने रखती है। और दूसरी बात, क्या जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी एक मोड़ पर किसी का साथ छूट गया और रह गई केवल उदासी।

0: और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मनमोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि कोच्ची की शाम पसंद है, हमारे छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन फिल्म का ये गाना है, इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि गुलजार के ये बोल, सुरेश वाडकर की आवाज, हृदयनाथ मंगेशकर का ये संगीत है। एक और
1: हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही क्षण पश्चात आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले खूंटी भाजपा जिला अध्यक्ष, खूंटी बाईपास निर्माण शुरू कराने का किया आग्रह। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में बाबूलाल मरांडी ने किया सरकार पर हमला, सीआईडी जांच पर उठाए सवाल। कृषि मंत्री ने दिया जवाब, कांग्रेस निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, कई संदिग्ध गिरफ्तार। सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए सरकार ने खत्म की वीआईपी व्यवस्था, बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में समान दर्शन व्यवस्था लागू। और ईस्ट जोन टीम की कप्तानी संभालेंगे ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के खूंटी जिलाध्यक्ष आनंद कुमार और वार्ड पार्षद अनूप साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर तुपदाना कुंदेबारटोली राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के फोरलेन निर्माण और खूंटी बाईपास परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में विलंब के कारण लगभग 1,907 करोड़ रूपये की इस परियोजना का काम शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने केंद्र से आवश्यक कार्रवाई कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की। हजारीबाग में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने मामले की सीबीआई जांच कराने, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें पदमुक्त करने की मांग की।
3: सीआईडी जिस प्रकार से जांच कर रही है, उनकी जांच ही संदेह के घेरे में। जेसीसी में जिस प्रकार से उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद जब अफसर बदले तो पूरे कुछ बदल दिया और कोर्ट को भी उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, और इसलिए सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले।
2: जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सीआईडी को जांच का आदेश दिया।
4: जेपीएससी का चीजें उजागर हुई हैं, बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है पूरे राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए, सरकार के लिए। मैं क्रेडिट भी देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, किसी भी सरकार के लिए अपने ही शासन में अपने संस्थाओं के ऊपर जांच कराना कोई आसान चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही बात आई उन्होंने सीआईडी को सौंपने का काम किया है और मुझे लगता है बहुत कम समय में चीजें निकल के आ रही हैं, काफी चीजें क्लियर होते हुए जल्द ही दिखेगी।
2: राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश जारी कर नियुक्ति तिथि

0: इसे ग्रेड वन में प्रोन्नति का वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है। इससे राज्य के लगभग 8 से 10 हजार शिक्षक या उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। विभाग के अनुसार वर्ष 1982 से 2012 के बीच नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के बाद यह लाभ मिलेगा। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रिंस खान गैंग से जुड़े संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक संदिग्ध अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि कुछ अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर विशेष अभियान चलाया गया था। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई और फरार अपराधियों की तलाश जारी है।
1: पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार के साथ आने वाले हैं। उसी सूचना पर घेराबंदी की थी। अपराधियों के द्वारा एस्केप करने का प्रयास किया गया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, एक अपराधी को गोली लगा है। कई लोग हथियार के ट्रांजेक्शन में, रेकी करने में, सूचना उपलब्ध कराने में और अन्य चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, जिसके बारे में फर्दर जानकारी हम लोग लेंगे।
0: रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी में पहली बार आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन से 18 स्वस्थ मोर के चूजों की सफल हैचिंग कराई गई है। उद्यान प्रबंधन के अनुसार वैज्ञानिक निगरानी में पूरी हुई इस प्रक्रिया से अंडों के सुरक्षित विकास और चूजों के जीवित रहने की संभावना बढ़ी है। सभी चूजों को वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप विकसित नर्सरी में रखा गया है, जहां उनके स्वास्थ्य और विकास की लगातार निगरानी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत गिरफ्तार भाकपा माओवादी के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा समेत पांचों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची से धनबाद लाया गया। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। पलामू के मेदिनी नगर स्थित कोयल नदी के शिवाला घाट के पास हुई गोलीबारी में 3 युवक घायल हुए। पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश में हुई इस घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चैनपुर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में घायल मकबूल मियां की इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य सरकार ने श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में वीआईपी तथा आउट ऑफ टर्न दर्शन की व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकार ने सभी श्रद्धालुओं के लिए समान दर्शन व्यवस्था लागू करते हुए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संस्थानों से वीआईपी दर्शन के लिए अनुशंसा नहीं भेजने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और श्रद्धालुओं को सुरक्षित तथा सुगम दर्शन की सुविधा होगी। सावन माह के पहले दिन कोडरमा की शिवभक्त कुसुम कुमारी गौ संरक्षण का संदेश लेकर विशेष पदयात्रा पर निकली हैं। उन्होंने झुमरी तिलैया के झरना कुंड से 21 लीटर पवित्र जल लेकर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर और फिर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक का संकल्प लिया।
2: सावन में तो मेरा ये तीसरा साल है, 21 लीटर जल लेके जाएंगे।
3: 21 लीटर जल है वो हम सुल्तानगंज पहुंच के बाबा अजगैबीनाथ पे जल अभिषेक करेंगे और पुनः वहां से गंगा जल 21 लीटर लेकर बाबा धाम जाएंगे, बाबा धाम से बासुकीनाथ।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 9 अंक बढ़कर 77,663 पर और निफ्टी 6 अंक बढ़कर 24,257 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। रांची के जेवीएम श्यामली में

विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए ईस्ट जोन टीम का कप्तान बनाया गया है। 15 सदस्यीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को स्थान मिला है। किशन के अलावा कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, विराट सिंह और शिखर मोहन टीम में शामिल हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले खूंटी भाजपा जिला अध्यक्ष। खूंटी बाईपास निर्माण शुरू कराने का किया आग्रह। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में बाबूलाल मरांडी ने किया सरकार पर हमला। सीआईडी जांच पर उठाए सवाल। कृषि मंत्री ने दिया जवाब, कांग्रेस निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल, कई संदिग्ध गिरफ्तार। सुरक्षित और सुगम दर्शन के लिए सरकार ने खत्म की वीआईपी व्यवस्था। बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में समान दर्शन व्यवस्था लागू। और ईस्ट जोन टीम की कप्तानी संभालेंगे ईशान किशन। दलीप ट्रॉफी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को मिला स्थान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया। ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया, रफी साहब की याद में कार्यक्रम जरूर होगा। और क्यों ना आज ही से हम रफी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफी साहब की आवाज वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती है कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है। याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी सच्ची दोस्त है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अधूरी कहानी के नायक और नायिका के लिए आंखें सजल होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है लिखते हैं कि दिल नाजुक है और उसका भावुक होना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। एक और श्रोता है लिखती है कि कुछ गाने बीतते नहीं हैं, दिल में एक टीस पैदा करते हैं और आंखें भीग जाती हैं। आरती मुखर्जी वाला गाना उन्हें कुछ इसी तरह का

का गाना लगता है। और अब मोहम्मद रफी की आवाज आ रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा एक फलसफा। कल मोहम्मद रफी की याद का दिन, 31 जुलाई का वो दिन जब रफी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। क्यों ना आज से ही रफी साहब के प्रति अपने जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफी साहब की आवाज से, कितना मायने रखते हैं रफी साहब आपके लिए।

एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरी डिटेल्स आपने लिख ली हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज रूह को छू लेने वाली आवाज है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे न धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूं, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार, सब यादें रह गई, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्रलेखा फिल्म का ये गाना। एक और श्रोता का कहना है कि रफी साहब की आवाज का तिलस्म कभी खत्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और श्रोता का कमेंट है, सुमधुर गानों की बौछार जैसे बारिश की पहली बूंदें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि मुकेश साहब पर आधारित दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, दो दो बार सुना पर प्यास नहीं बुझी। इस तरह के कमेंट्स हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था। फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये भी कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा, या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह है जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बावरा का लिखा गीत, कल्याण जानी जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा। एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला

0: और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रही है कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई हर खुशी हो वहां हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है, आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गैस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली, और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा, वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में, और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही है।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा, जिससे बात ना हो। दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो जरा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूं, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारे श्रोता ये, बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही की आज सीख लीजिए। आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

एक श्रोता लिखते हैं कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह क्या कहने हैं। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहां कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें क्या बात है। एक और श्रोता है जो ये कहती है कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहां कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकोड़े खाने से मना किया है और आप पकोड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकोड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता हूं और महिलाओं का सहयोग करता हूं, खाना भी बनाता हूं, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज है, आप पधारिए पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफर जो है वो गानों से ज्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफर हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए जरा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कहीं। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम का मजा कि जिसमें आप हमारे हम सफर बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफर कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं। मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

दोस्तों, जीवन में बचपन की महत्ता सर्वोपरि होती है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार से कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं।

बचपन की मासूमियत सारी उम्र पर भारी होती है। बेबाकी से बढ़ती जिज्ञासाओं का अंत होते होते बचपन एकदम से आगे बढ़ जाता है। हर एक मुसीबत, असंख्य परेशानियों से परे, अपने में ही गुम बचपन हमेशा सहज बना रहता है।

0: होता है।
1: किसी भी हाल में कहीं भी रहिए, अगर जिंदा दिल बने रहना है तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जगाए रखना होगा, ताकि जीवन का चैन और आराम हमेशा हमेशा बरकरार रहे।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विने धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे हैं और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोप्राइटरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई व्हाटएवर नेम इट मे बी कॉल्ड व्हिच इज एंगेज्ड बाय द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
4: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है।

0: कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में एक बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
2: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
4: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
5: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा

0: है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले दो से तीन दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावण मेला शुरू हो गया है।
3: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले, इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज चिल्टमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के चार शहरों, अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट।

0: भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

बहू बेगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में था। साहिर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज थी।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में यह भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का यह गाना।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की 370 करोड़ रुपए की मांग के मुकाबले केंद्र ने महज 58 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि एसटी वर्ग के लिए इस वर्ष कोई राशि नहीं मिली है, जबकि अल्पसंख्यकों का फंड वर्ष 2021-22 से रुका है। श्री सोरेन ने शिक्षा बाधित होने से बचाने के लिए केंद्र से विशेष नीतिगत निर्णय के तहत केंद्रीय अंशदान बढ़ाने का आग्रह किया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि लगभग 17,000 एमएसएमई रक्षा क्षेत्र से जुड़ चुके हैं। वायुसेना और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की संयुक्त कार्यशाला के बाद उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को पूरी तरह स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: अब लक्ष्य एक ही है कि पूरे डिफेंस सेक्टर को स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है 2047 विकसित भारत का। उस लक्ष्य की ओर पूरा डिफेंस सेक्टर बढ़ा है, हमारा प्राइवेट प्लेयर डीपीएस यूथ, हमारा स्टार्टअप, हमारा जो यूथ है दुनिया के किसी भी स्टार्टअप से कम नहीं है। और हमारा यूथ अभी दुनिया की नई से नई टेक्नोलॉजी उसको धरातल पर उतार रहा है, और निश्चित रूप से कह सकते हैं आने वाला जो दशक है वो भारत के युवाओं को होगा, भारत के स्टार्टअप को होगा।
0: झारखंड में एसआईआर फॉर्म भरने की अवधि बढ़ाने पर सियासत तेज है। झामुमो और कांग्रेस ने खेती तथा श्रावणी मेले का हवाला देकर समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि व्यस्तता के कारण कई लोग फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, जिससे मतदाताओं के नाम छूटने की आशंका है। वहीं भाजपा ने इसे तर्कहीन बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सत्ता पक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी में आज दोपहर एक भीषण सिलेंडर विस्फोट हुआ। इस हादसे में दो मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि छह अन्य घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना आज छठे दिन भी जारी है। मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुआ यह आंदोलन अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गया है, जहां सैकड़ों छात्र टेंट लगाकर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा।
2: पेपर लीक का मामला इतना ज्यादा यहाँ बढ़ गया है कि हम लोग आज व्यवस्था के कारण बाहर हो गए हैं। हम जेपीएससी जेएसएससी का खुद छात्र हैं, आज मेरा एज ओवर हो रहा है, तो क्या करें हम समझ में नहीं आ रहा कि छात्र मतलब रह के कि झारखंड में क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ था उस तर्ज पर यहाँ झारखंड के राजधानी रांची में हम लोग करने जा रहे हैं। जब तक समस्या का समाधान होगा निचोड़ तब तक हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे।
0: देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक रिपोर्ट।
3: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची में खेले गए 135वें डूरंड कप के ग्रुप सी के दूसरे मुकाबले में भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम ने श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी को 2-1 से हरा दिया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में वायुसेना ने शुरू से दबदबा बनाए रखा। मैच के 25वें मिनट में नाओरेम सोमनंदा सिंह ने शानदार गोल कर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद 68वें मिनट में विपक्षी टीम के आत्मघाती गोल से यह बढ़त 2-0 हो गई। श्रीलंका ने एक गोल कर वापसी की कोशिश की, लेकिन वायुसेना ने जीत के साथ 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: लखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस बारिश तरह
2: के दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है।
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
2: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन बड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा है उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार और किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो
1: हमें बताएं। अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
2: बिल्कुल।
1: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
2: बिल्कुल
1: साझा।
2: आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया, तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले?
1: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
2: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें।
1: जी, और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
2: तो
1: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया।

0: और
1: उपयुक्त टिप्स।
0: हाँ वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कर रहे हैं उससे हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे
1: जी। और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
0: अंतर्राष्ट्रीय
1: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना
1: जी,
0: सखा हैं,
1: हमारे साथी हैं। उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
0: है। हमारा दिवस है, समझ
1: जी, हम सभी का दिवस है
0: जी, बिल्कुल।
1: और आप क्या करें,
0: बिल्कुल एक गीत सुनते हैं ना,
1: सुन लेते हैं गीत।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर बात करना बहुत जरूरी होता है, है ना।
1: जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ,
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी,
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं,
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में, श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: वो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल। और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
0: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा।
1: बिल्कुल। और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती, ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
0: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल। क्या हमारे एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
0: संबल मिलता है।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कोई है साथ में,
0: कोई है कि अरे मैं हूं ना तो चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करती
1: है, शब्द होते हैं
0: जी,
1: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
0: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है। ये कोई व्यापार नहीं बल्कि आत्मिक संबंध है। यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है। इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
1: तो एक गीत सुने,
0: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और ये गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं,
0: क्योंकि यानी उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं।
0: जी, तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी दाती को। जी
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: हम तो सोच भी नहीं

0: डॉक्टर बुद्धि दादी ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
1: और डॉक्टर बुद्धरी ताती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
0: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था,
1: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुद्धरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
1: अब एक संदेश सुनते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठ ही नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे
0: रूठ गई
1: रूठे नहीं है क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा।
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो।
0: और फिर फिसलने का डर भी है, है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी।
1: पानी भर गया अगर और हम ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो।
0: और उसमें ना हमारी चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए। और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है, है ना, एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना। जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे
0: हरी हरी कोपले आ जाती है। और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है,
1: बिल्कुल इतना अच्छा आंखों को लगता है, ऐसा दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो
0: हमारी तरह,
1: बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती। बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है।
1: सच में अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए पूरी धरती पे ना,
0: बहुत सुंदर
1: लगता है। और यही कारण है कि मानसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है,
1: बाद में बना लीजिए अगली बार,
0: क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल, और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जाँच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोगों की बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे, प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति जो प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या

0: हाँ सुनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि भी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है,
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, सिर्फ ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय

0: बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए तो वो भी होटल में रुके हुए, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खानपान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद, मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
0: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती, एक गाना सुन लेते हैं। सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: सोनाली? हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपने नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है, ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका, मैंने पलट कर देखा तो बोला चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार आया कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। बहुत सही बात लिखी है कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत जरूरी है, थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं। मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिसे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज, लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है तो वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे
1: ही अपने घर के बाहर भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है,
0: इस तरीके की जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे या बस में बैठे तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पे चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पे गिर जाता है कभी कभी, इस तरह तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से नहीं करना।
1: कई बार जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं पर जरूरी नहीं है वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं, गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि हवा से जो जीवाणु है कीटाणु है वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा कहना ही चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक।

0: तो ऐसी आदतें ना केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली और दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी वो उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: और अब गीत सुन
0: लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो।

0: डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
1: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
0: बिल्कुल
1: तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं।
0: जी,
1: और छोटे मोटे चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती है कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको काट के लगा सकते हैं।
0: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए, और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
0: और आप क्या करें,
1: ये गीत सुनते हैं
0: गीत।
2: झांझरे रुंचुन रुंचुन

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा. सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत. आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.
2: सहेली.

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की 370 करोड़ रुपए

0: की मांग के मुकाबले केंद्र ने महज 58 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि एसटी वर्ग के लिए इस वर्ष कोई राशि नहीं मिली है, जबकि अल्पसंख्यकों का फंड वर्ष 2021-22 से रुका है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज नगर भवन में दिव्यांगों के बीच 150 आधुनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया। लाभुकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही नारायण सेवा है और सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। खूंटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी रांची के अनुसार थाना प्रभारी ने एक मामले में राहत दिलाने के एवज में शिकायतकर्ता से 4.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते हुए आज उन्हें दबोचा गया। साहिबगंज के सिद्धू कान्हू ऑडिटोरियम में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन और जेम पोर्टल पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, निर्यात प्रक्रियाओं, दस्तावेजीकरण और ई मार्केटिंग के प्रति जागरूक करना है। लातेहार जिला मुख्यालय के मेन रोड पर आज सुबह गारू प्रखंड के कबरी गांव के ग्राम प्रधान राजेंद्र उरांव का शव बरामद हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के निर्देश पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सर हम बोल रहे हैं प्रतीक खान बोल रहे सर।
2: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है भरोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
2: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
2: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर दूरी पे है।
2: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ हुई थी सर बारिश।
2: अपने गाँव में खेती कहाँ होते?
1: सर खेती अपने यहाँ होती है थोड़ा इनकी।
2: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं लगी यहाँ पे सर।
2: तालाब?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
2: तालाब बहे थे कोई?
1: नहीं सर, तालाब है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, पर दूर पे तालाब थे मेरे यहाँ से।
2: हो, बाकी का हालचाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
2: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
2: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
2: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंसमेल बुगला।
0: अच्छा जी
1: सर, आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ।

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती पर मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये अब सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती है?
1: सर जी नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियाँ?
1: हाँ, अभी धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़
1: जी? सर धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़।
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी। हमारे यहाँ
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी।
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुँच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है
1: सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: तो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिन का नाम है डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: गर्दन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डस ले तो क्या कहना है?

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ, आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हाँ, हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।
0: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।
0: जी जी, आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए
1: वहाँ पे? ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, इस पल हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:29:50 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आज आप सुनेंगे इसका एपिसोड नंबर 1339, भाग संख्या 1339।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान

0: और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
1: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं
0: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
0: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था जय हिंद।
1: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
0: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
1: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
0: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
1: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
0: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
1: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
0: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
1: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया और जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
0: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
1: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
0: जी
1: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
0: लब्ध प्रतिष्ठ।
1: इसका अर्थ है
0: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
1: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
1: श्रोताओं आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
0: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में

हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
4: चलो।

0: पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
2: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
3: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
0: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
4: लुई पाश्चर
5: सर,
4: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
5: कहिए सर।
4: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
5: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
4: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को

0: कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ।
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई है सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
5: आप,
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा
5: अच्छा,
6: बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही। जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्टर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्टर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्टर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्टर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्टर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो प्रयोग और नए विचार पास्टर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्टर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
3: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्टर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्टर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
7: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
8: जगबंधु,
7: चेतना,
8: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और आज आपने सुना इस प्रोग्राम का एपिसोड नंबर 1339। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। संध्या के 5 बजे हैं, अब आप सुनेंगे
11: मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में 5 अगस्त को SIR के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद छूटे हुए पात्र नागरिक नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अब केवल 5.3% मतदाता अनमैप्ड श्रेणी में बचे हैं। PMO के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आज खूंटी में पद्मभूषण करिया मुंडा से मुलाकात कर PM केयर्स फंड के कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि फंड में अब तक 19,013 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। JSSC में कथित अनियमितताओं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने आज रांची में लोकभवन का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लोकभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जहां छात्रों ने सरकार के

0: खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सरायकेला पुलिस की एसआईटी ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्ग्यारी ने आज प्रेसवार्ता में बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कट शिमला गांव में एक डोभा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वे शाम को शौच के लिए निकले थे। सूचना मिलने पर जरियागढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य में बारिश की कमी का विचलन घटकर 25% पर आ गया है, जिससे राज्य धीरे धीरे सामान्य मॉनसून की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 30 जुलाई तक राज्य में 372.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 5:02 और 12 सेकंड हुए हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले इन सब किसान भाई बहन के प्रशांत के देने से जोहार और सब गोटे के कार्यक्रम में स्वागत हो किसान भाई बहन। आज ये कार्यक्रम में हमारे संगे थी उमेश भाई। तो उमेश भाई तो रोज जोहार।
1: जोहार प्रणाम प्रशांत भाई। और आज के कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के एक बार फिर से स्वागत करो ये साथे साथ जोहार। और देखा प्रशांत भाई, आज हम इन कार्यक्रम में बड़ी दिन बाद भेटे ले ये भाई।
0: बिल्कुल।
1: तो कह चाहे तोहर से जाने चाहे कि भाई का तुहर काम धाम चले थे। अब दर देखा कि हम इनके जो महीना चले थे ना अगस्त महीना, तो एकर में का है कि भाई देखा
0: सबसे पहला चीज हो कि बहुत बढ़िया तू कहला है भाई काम धाम के बात। और हम ये बात जरूर कहन किसान भाई बहन के कि देखा कि पानी गुंदी है से रुक रुक के होइए रहल है।
1: हाँ हाँ।
0: और पहले तनु सुन लगे है कि भाई पानी गुंदी है से नहीं पड़ रहा है तो हम इनके खेती पिछवा गेल है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन धीरे धीरे है से किसान भाई बहन आश्वस्त हो गलती है और काम धाम में जुट गलती है। अपन बारी जितना खेत में तैयारी करे खले
1: वो
0: लगभग तैयार हो चुके है। अब ऐसे रोपा उपा भी शुरू कर रहा थी बहुत जगह, और बहुत जगह है सो ओकर में खेत बनावे की तैयारी में लगा लेती।
1: बिल्कुल भाई। देखा अभी जुलाई महीना चले थो और अब देखवा कि हम इनके अगस्त भी आ जीते।
0: हाँ।
1: और देखा ना कि हम इनके जो है से जो हम इनके किसान भाई बहन थे।
0: हाँ।
1: बहुत हथ उनके उनका जो है से धान के बिचड़ा तैयार हो गया है। बहुत किसान भाई बहन धान के रोपाई कर लेते
0: शुरू कर लेती
1: है। और दूसरा दिन का है कि देखो बारिश झारी में जो उनका जो है मकई लगे लेते हैं, तो कोई जो है घंघरी लगे लेते हैं, तो बोदी लगे लेते हैं।
0: हाँ।
1: तो वो जो है से देखवा कि मकई भी अब जो है से कोड़ाई कर लेते।
0: एकदम सही बात कहला भाई कि मुख्य हम इनके जो अभी खेती बाड़ी के चीज हो।
1: हाँ।
0: हम इनके धान बहुत ज्यादा है से किसान भाई बहन पूरा ना उपज कर रहे थे। ज्यादा अब शौक रखा थी खेती बाड़ी में सब्जी उपजा।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अब झारखंड में देखवा कि पठारी क्षेत्र है तो खातिर है से जल जमाव के यहाँ से परेशानी उतना नहीं है।
1: हाँ,
0: तुरंत
1: हाँ।
0: पानी पड़ो तुरंत निकल भी जाए।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ देखवा कि किसान भाई बहन है से सब्जी ज्यादा उगा हुआ थी।
1: हाँ, हाँ।
0: बरसात के समय में और यहाँ की सब्जी है से दूसर राज्य भी चल जाए
1: दूर दूर तक जाए।
0: हाँ।
1: अब दस देखा ना कि बिलौती लगे ले तो मरचाय हो तो फूलगोभी हो तो पत्ता गोभी हो।
0: हाँ।
1: देखवा कि एकदम बारिश झारी में पूरा लगावे था तुम अभी किसान भाई।
0: बिल्कुल। हाँ। देखा एक मैदानी भाग में तुहरा अभी है सो बारिश झारी हाँ। ना ऐसा हो सको। मैदानी भाग में पानी पड़ो है तो पूरा एकदम दहबोर पानी हो जाए।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन हम इनके पठारी भाग में है से पानी पड़ो है तो पता ना लगे।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ से पानी सरसराक निकल जाए तो एक लेल

0: यहाँ पर यह से बरसाती सब्जी ज्यादा उपज हुआ है।
1: बिल्कुल, और देखवा ने की अब धर का कर लेते हैं उनके किसान भाई बहन की जो व्यवसायिक खेती कर लेते हुए, तो उनका अगर जमीन कम हो तो वो क्या करो थे कि भाई एकड़ एकड़ जो है 5 एकड़ 10 एकड़ इस तरह जो है लीज पर ले लो थे।
0: बिल्कुल,
1: और बेस तरी से एकदम जो है से देखवा ने कि बढ़िया से जो है एकदम लगाओ थे, जैसे शिमला मर्चा लगे लेते हूँ तो शिमले मर्चा जो है से एक आध एकड़ लगा देते हूँ, खीरा हो कद्दू हो ककड़ी हो ये सब सब लगाओ थे किसान भाई बहन, तो कहीं ना कहीं देखा कि हम इनके जो है ना खाली इच्छा शक्ति होवे के चाहे।
0: सबसे बड़ा चीज बतेला कि अभी जे कि जेकर पास जमीन कम है वो दूसर जगह है से किराया पर जमीन ले लेती थी।
1: हाँ हाँ।
0: और किराया पर ले करके वो अपन खेती बाड़ी शुरू कर रही थी। पहले देखा कि ई ऐसे शुरुआत होले समूह में।
1: हाँ हाँ।
0: और समूह में शुरुआत होले तो बहुत ही आसान तरीका से, पहले मान लिया कि बोन झाड़ वाला इलाका भे गलो, झाड़ी जगह इलाका हो गलो, तनी एकांत वाला इलाका हो गलो, तो अकेले करना मुश्किल लगो।
1: बिल्कुल,
0: तो हुमा समूह में जाते और हुमे रह करके खेती बाड़ी हुमे पर कुरहा लगा के
1: कुरहा लगा लेते,
0: और हुमे पर रह करके हुआ पर ही कम से कम 4-5 महीना के लिए जमीन वगैरह एक बार देख लेती ताड़ के कि 4-5 महीना में हम इनके अगर टमाटर लगो ही है, बैंगन लगो ही है, मिर्चाय लगो ही है, तो कैसे ऐसे उपज दे है। 4 महीने के बाद फिर आगे ऐसे होकर मियादी बढ़ा देती अगर बढ़िया हो जाए तो।
1: अरे देखवा ना एक बात और है कि खेती बाड़ी के जो है ना पैमाना बढ़ रहलो।
0: हाँ।
1: देखवा कि पहले का है कि भाई एकड़ 2 एकड़ लोल थी नर जो है से खाली जो है से बिलौती तो कोबी तो मरचा लग बोल थी।
0: हाँ।
1: अब धर का हो कि देखा कि किसान भाई बहन इतना ये हो गल थीन है मेहनत करो थीन।
0: हाँ।
1: कि देखवा कि मल्चिंग विधि से कर रहे थे भाई।
0: हाँ।
1: ड्रिप इरीगेशन से तकनीक से करे थे तू, ताकि जो है से उनका मेहनत कम लगो है और जो है समय पर जो है पैदावार भी बेहतर से हुआ। और एक फसल के कई बार लो थीन भाई वो फायदा।
0: हाँ।
1: तो इस तरह से कहे कि भाई उनके किसान भाई बहन जो तो उसे खेती बारे में काफी अब जो है जागरूक हो गए थे।
0: हाँ।
1: और देखवा कि मेहनत भी करो थे और पैदावार भी बेस्ट तरीके से लोते।
0: बिल्कुल, तो भाई खेती बारी के किसान भाई बहन अब धीरे धीरे ऐसे पेशा के रूप में अपना।
1: हाँ।
0: लेते हैं, एक व्यवसाय के रूप में अपना लेती है।
1: हाँ।
0: और खास करके हम इनके युवा वर्ग
1: बिल्कुल
0: जे बेरोजगारी के समस्या झेलल थी।
1: हाँ हाँ।
0: उ है से कृषि की तरफ आगे आ गई थी।
1: बिल्कुल,
0: और देखा कि अब धर तू देखवा कि बड़ा जंगल झाड़ एरिया पहाड़ी एरिया में तू।
1: हाँ।
0: जाकर देखवा कि पूरा एकदम ऐसे मल्चिंग विधि और ड्रिप इरिगेशन लगल हो।
1: बिल्कुल,
0: और उ एकड़ो एकड़ में।
1: हाँ।
0: चाहे वो जेसीबी से जमीन के है से पूरा एकदम
1: बराबर समतल कर ले,
0: ट्रैक्टर से पूरा जोता करके और मशीन से तू। हाँ। पूरा एकदम मल्चिंग बिछा रहा थो। तो ये चीज देखबा कि ये चीज एक किसान के बस के बात ना है,
1: ना है।
0: यहाँ पर ऐसे बहुत है से युवा
1: समूह में
0: और समृद्ध युवा।
1: हाँ।
0: पढ़ा लिखा युवा
1: वो
0: सब जा करके है से अपन ऐसे वहाँ पर ज्ञान के है से वहाँ पर कमाई कर रहा थी। अपन ऐसे दृढ़ संकल्प उनकर अंदर में है, जो जज्बा है काम करे के खेती करे के वहां पर है से एकदम उड़े रहा थी और ओकर से एकदम पूरा बढ़िया से अपन आपके समृद्ध कर रहा थी।
1: हाँ।
0: और गांव घर के अगल आस पास के आदमी जो बोनझार में रह रहा थी
1: बेरोजगार थी।
0: किसान छोट छोट किसान थी।
1: हाँ हाँ।
0: वहां पर जाकर के उनकर खेती करो थी।
1: बिल्कुल,
0: और उनकर से मजदूरी और ओकर से अनाज वहां से आराम से ले रहा थी और बढ़िया से अपन आपके जीवन को उपार्जन कर रहा थी।
1: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा कहा है कि भाई इतनी से किसान भाई बहन लीज के जमीन पे लेके करो थी ना तो देखवा कि अगल बगल में आसपास से उनका मजदूर भी बड़ी कम ई पर मिल जाते।
0: हाँ।
1: और देखा कि जो बेरोजगारी है तो काहे भी वो इनके काम भी मिल जाए। साथे साथे देखवा ने जे साग सब्जी तोड़ो थी।
0: हाँ।
1: तो ओकरो में काहे कि भाई छटनी हो।
0: हाँ।
1: और देखवा कि जे बेस हो बाजार चल गलो दूसर राज्य ले गल तुम और जे कहा कि जे छाट हो गलो ओकरा देखवा कि 5-10 रुपए किलो करके ले आनल थोर बेच दल
0: तो देखा कि देख तो तोरा सस्ता दाम में तोरा। हाँ। गांव घर में सब्जी उपलब्ध
1: गांव घर में मिल
0: गलो। दूसर बात है कि तू अपन काम करला गांव घर में तो तोरा है से गांव घर में मजूरी
1: मिल गलो।
0: तोरा है से शहर जाके है से दूर दराज के अपन परिवार से बिछड़ के रहे भी एक पड़ो चेंगा चुटिया साथे रहला चेंगा चुटिया की भी बढ़िया से देखभाल करला। और मान लिया बरसात के मौसम में है।
1: हाँ।
0: बरसात के मौसम में परिवार से दूर रहे के बाद तुरा देखा कि चेंगा चुटिया के बार बीमारी हो तबियत खराब हो रहा तो देखवैया ना मिले।
1: बिल्कुल,
0: अगर गार्जियन रह रहा शहर में उनको अगर बीमारी पड़ गए कोई तरह की बीमार पड़ गए तो उनको देखवैया ना मिल रहा।
1: बड़ी तरह
0: से चीज है अगर परिवार के साथ अगर सहयोग मिल जाए तो एक मजबूती आओ है और विकास के है से नावा है से एक राह खुल जाए।
1: देखा अब जो है हम इनके कहा है कि भाई बहुत ऐसा किसान भाई बहन हथिन।
0: हाँ।
1: कि खेती बाड़ी छोड़ के चल जाती मजूरी करे बाहर चल जाती दूसर राज्य वहां कहो कि देखा अकेले है तू बीमार पड़ गए तू चाहे फिर कोई तरह के मुसीबत आ गलो तो उनका जैसे आवे में बड़ी समय लग जाए।
0: बहुत

0: अब घर में देखा कि कोई बड़ बीमार हो गलो चाहे कोई दिक्कत हो, एकर से का है कि भाई देखा बाहर में है कि कम मजदूरी भी मिलो है और एकर से बेस्ट है कि अपन घर में रह के बाल बच्चा के साथे रह के पढ़ा लिखा के और थोड़ा रोजगार भी मिल जाए।
1: बिल्कुल कहला सही बात कि बाहर में मजदूरी देखे में तो ज्यादा लगो
0: हाँ
1: देखे में लगो है कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हुमा वो जोड़ रहा है कि ओकरा अकेले रहना है
0: हाँ हा।
1: रहे की जगह पर किराया लेना हो,
0: बिल्कुल
1: खाना खोवा अपने बनाना हो,
0: अपने बना
1: सब कुछ तोरा अपने करना हो तो ओकर में भी समय देना हो, तो अगर जोड़ के देखवा ने सब बतिया बराबरे हो जाए
0: बराबर
1: और परेशानी है ज्यादा बढ़ चढ़ के आओ।
0: हाँ देखा एक बात आ रहा है का है कि देखा कितनो तो बाहर चल गया कमा ले, लेकिन धान रोपे घरी तोरा आभे पर तो कहे कि देखा आपन खेती आपन ही हो है, अगर तू बढ़िया से बेस्ट तरीके से धान के खेती कर दा तो तू साल भर जो है से आराम से घर में खा सको।
1: बिल्कुल
0: और हम इनके देखा किसान भाई तीन के झारखंड में देखवा कि धान और मकई की खेती बहुत बढ़िया हुआ। अब धर कहे कि वे देखा अब साग सब्जी पर हम इनके किसान भाई बहन उतर गए तो
1: बिल्कुल
0: और साग सब्जी भी बेस्ट तरीके से करो थे बढ़िया मुनाफा ओकरो में कमाते, देखवा के व्यापारी एक से एक जो है से तोहरा बारिये से खेते से उठा के ले गए तो तोहरा जो है कहीं शहर जाए जरूरी ना पड़ लो और देखा कि बढ़िया भाव में जो है मुनाफा भी किसान भाई बहन के हुआ, पूंजी भी कम लगो हन और मेहनत भी जो है से कम हो जाए।
1: बिल्कुल सही बात कहला उमेश भाई। अब देखा धान के बात तो छेड़ डाला।
0: हाँ हाँ
1: धान जो है से किसान भाई बहन है से हिया पर ही जितना भी उपजे लेकिन मुख्य फसल के रूप में अपनावल जाए।
0: हाँ हाँ
1: हिया तो अब धर के समय में किसान भाई बहन धान जब लगा रहा थी तो उनका कहा है कि एक दूरी रस्सी खींच करके
0: हाँ
1: और पूरा एकदम सोझे सोझे लगे थी।
0: हाँ हाँ
1: और चले के लिए रास्ता भी तन सुन
0: छोड़ दे
1: छोड़ रहे तो ओकर से कहा हो कि धान के ऐसे फैलाव करे में
0: जे धान
1: तो
0: का मोवार
1: में मोवार फूटे हाँ, में ओकर ऐसे आसानी हुए और तनी जगह मिलो है हवा पानी लगो है तो ज्यादा पैदावार ओकर है से बढ़ के आओ है।
0: हाँ, हाँ,
1: तो ई चीज जरूर करती और चले में भी है से किसान भाई बहन के आसानी होते और देखा ओकर में हुए की कभा कभार हुए की धान में है से ऊपर में छोटे छोटे है से कीड़ा लगे लगो
0: कीड़ा लगे लगो
1: तो ओकर में भी देखा की तू चलभा तो कम से कम रस्सी चलावे में तोहरा आसान हो
0: आसान हो तो झड़ जितो
1: झड़ जितो।
0: हाँ
1: तो ई चीज है से किसान में ध्यान देती जरूर तने से एक जगह दूरी अपन तय कर लेती कि एक हाँ। बिचड़ा से बिचड़ा की दूरी कितना होवे के चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: ओकर से का हुए कि पहले हम इनके हो बोले
0: श्री विधि
1: तो हाँ। श्री विधि जब होवो है तो ओकरो में है से दूरिये के है से
0: दूरिये के हिसाब से
1: रखल जाए और उम जगह से जगह एक पौधा से दूरी पौधा के दूरी बराबर हो सब चाहे एक फीट रखला
0: हाँ।
1: के कतार से कतार के दूरी
0: तो
1: बराबर रह लो और बाकी ऐसे तू है से 8-8 इंच 6-6 इंच पर जो रोप ले जा लेकिन ऐसे बराबर सीधा में रोपा तो तोरा आसान हो तो कर में।
0: और दूसर बात है ना प्रशांत भाई कि देखा हाँ। अगर कोई रोग व्याधि लग गई
1: हाँ।
0: तो कहे कि भाई तू रस्सी तान के ओकरा जो है अगर झाड़ देवा तो वो भी तोहरा बढ़िया रहते
1: बढ़िया रहते।
0: दूसरा बात है कि देखा अगर खरपतवार तोहर बढ़ गलो
1: तो
0: निकोनी करे में तोहरा आसानी होता है।
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं देखा दूसरा बात का है कि अगर पानी भी तोहरा पटावे के है तो पानी जो है से अगर तू जगह छोड़ ले हा तो ओकर से देखवा कि तोहर पानी भी खेत में जो है से बढ़िया फैलाव हो तो
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज किसान भाई में जरूर ध्यान रखती और अवधेर के समय में सबसे बड़ा चीज हो कि आर पगार के पूरा एकदम ऐसे सुधार देना।
0: बिल्कुल
1: ओकर है से मरम्मती बढ़िया से करवा तो तुहर ऐसे धान के जो हाँ। पानी जो ऊपर वाला है वो पानी तुहर धान खेत में रुकतो और तू जो खाद उद जो दे रहा ओकर में
0: हाँ।
1: जो सरगती वाला हम इनके है से गोबर खाद ओकर में पड़ रहा है तो ओकर से पानी बह करके दूसर खेत में यार वो बाहर न चल जाते तो वो सरगती जो है तुहरा खेत के देते और धान के पैदावार ओकर में बढ़िया होते।
0: देखा हम इनके किसान भाई बहन के धान लगवे से पहले आयर के जो है हम इन मरम्मती करोगे।
1: बिल्कुल
0: और देखा तुहर अगर भूस लगल है तो भाई तुहरा अगर जे हो गलो है छेद हो गलो है लाता जो बोलो है तो ओकर से कहा तुहर पानी खेत से सब दूसर खेत में चल जितो
1: और वो दूसर खेत से दूसर खेत निकल जितो नाला बह जितो
0: तो वो नाला बह जितो तुहर खेत के पानी नहीं रहतो। दूसर बात है कि देखा अगर तो खाद भी छिड़का करला चाहे गोबर हो गलो चाहे और रासायनिक खाद छिड़का करो थी हम इनके किसान भाई भी तो कहा है कि भाई अगर तू बढ़िया से आयर के मरम्मती ना करला तो फिर तोहर जो है बेकार हुई तो हर देखवा ने कि धान जैसे 2-4 दिन धूप उगलो तो तोहर धान जैसे एकदम सुखा जी
1: चाटा पड़ी तो सही बात।
0: तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके मरम्मती करना बहुत जरूरी है ताकि हम इनके धान जो है हरियर रहे खेत में पानी रहे
1: बिल्कुल
0: कोई तरह से देखा आयर धांसे के भी संभावना न रहे।
1: आर देखा कि किसान भाई बहन काटते काटते बहुत पातर कर दे थी,
0: हाँ।
1: लेकिन ई गलती है से समझ ला कि भविष्य में वो नुकसान की तरफ ले।
0: देखा नीचे के किसान के लगो कि हम दो जो है
1: अंगुल बढ़ा दिलिए,
0: हाँ दो अंगुल एक कोड़िया से कछार मार के
1: बढ़ा दिलिए,
0: लेकिन ऊपर वाला का करे कि ऊपर वाला के काट दे है।
1: हाँ
0: तो यह तरका है कि दोनों नुकसान से होते।
1: एक तो देखा कि खेत बाड़ी के समय में तोरा आर पर चले में दिक्कत हो,
0: चले में देखवा
1: देखवा की सावधानी ने अगर जरा सा चूक जाती है आदमी तो गिर जाती
0: है,
1: गोड़ हाथ है से कभी कभार नुकसान ही पड़ जाए।
0: मोड़ पर जो है बिहन लगे था तू धान वाला,
1: हाँ।
0: तब फिसल गए तू, चाहे भूंजा ले जाए था तू
1: गोड़
0: ठा गलो। तो देखा हम इनका है कि अगर चौड़े आयर रखबे,
1: हाँ।
0: तो ओकर में सभे के जो है से
1: आसानी होते,
0: आसानी होते
1: बिल्कुल।
0: तो देखा प्रशांत भाई हम इन तो कार्यक्रम में बना लिया और भी बतियेबे,
1: हाँ।
0: किसान भाई बहन से तो कहे ना कुछ जो है से और सुनल जाए।
1: बिल्कुल सुनल जाए एक जानकारी भरल बातचीत।
0: हाँ हाँ
1: कि
0: हो धान के नर्सरी और रोग नियंत्रण।
1: अच्छा अच्छा अच्छा रोग नियंत्रण ओकर देखभाल के बारे में है आज के जे जानकारी है।
0: हाँ।
1: और सेवा रजक हथी जे किसान हथी वो अपन अनुभव साझा कर लेते और इनकर से बातचीत कर लेते उमेश रजक। तो सुनल जाए इनकर जानकारी भरल बातचीत।
0: बिल्कुल
2: किसान भाइयों हम अपने कार्यक्रम में समय समय पर अपने किसानों को उनके अनुभव को आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे एक बुजुर्ग किसान, इन्हें कहेंगे कि बुजुर्ग सफल किसान है और ये उम्र भर जो है खेती बाड़ी करते आए हैं और अभी भी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अभी किन किन फसलों को लगा रहे हैं, क्या क्या तैयारी चल रहा है इनका खेती बाड़ी का। तो सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका घर कहाँ हुआ।
3: मेरा घर सांपुर पंचायत हुआ,
2: हाँ।
3: प्रखंड कटकम संडे जिला हजारीबाग के रहने वाले हूँ।
2: अच्छा आपका शुभ नाम क्या हुआ।
3: मेरा नाम सेवा रजक, मैं हम किसान खेती करता हूँ, धान के फसल करता हूँ।
2: अच्छा
3: टमाटर मिर्चा बैंगन और धनिया गोभी कद्दू करेला।
2: यानी कि जो है आप साल भर जो है इन फसलों को जो है लगाते हैं और इनका खेती करते हैं।
3: हाँ।
2: तो अभी आप बता रहे कि धान का खेती आप कर रहे हैं और अभी धान का सीजन भी चल रहा है, तो क्या अभी धान का बिहन आप कर दिए, कैसे किए उसका क्या, हाँ। तरीका है आपका।
3: धान को बिहन पानी में किए हैं और पानी नहीं मिलेगा तो सूखने भी कर देते हैं।
2: अच्छा जैसे कहा जाता है कि सूखा जो बिहन भी करते हैं और पानी में भी गीला भी करते हैं। तो आप जैसे बिहन कर रहे हैं तो वहाँ पे बिहन करने से पहले क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ता है जहाँ जमीन में करते हैं
3: उसका जोत कर प्लेन करते हैं डोरा चौकी से, और उसके बाद दवा डाल के खाद मार करके धान पार देते हैं। जनरेशन आता है तो 20 से 25 दिन के अंदर हम लोग रोपा उनको करते हैं।
2: अच्छा यानी 20 से 25 दिन में जो है बिहन तैयार हो जाता है, धान का रोपने लायक हो जाता है।
3: हाँ।
2: तो जहां आप रोपते हैं धान को तो वहां क्या क्या तैयारी करते हैं, किस तरह।
3: पूरे मेढ़ा को भूस वगैरह इसी करता है, उसको कुदार से हम लोग उसको बंधवाते हैं और जोत कोड़ करके उसको प्लेन करके हम लोग खाद दे करके बिया को रोप देते हैं।
2: अच्छा तो कितना बार जोत कोड़ करना पड़ता है।
3: पहला चांस एक चांस करते हैं, पूर्व फारंग करते हैं, उसके बाद पूर्वे चांद करके उसको तीसरा चांस में हम लोग जोत करके उसको डोहरा दे करके चौकी को बिया को रोपा देते हैं।
2: अच्छा यानी कि जो है उसके बाद रोपाई के समय आप क्या कोई खाद वगैरह भी देते हैं।
3: भी देते हैं, बायोजम देते हैं।
2: हाँ।
3: और साथ में पोटाश देते हैं।
2: अच्छा अच्छा तो जैसे एक कट्ठा धान रोपाई में कितना खाद देते हैं, ये जो डीएपी बायोजम बता रहे हैं पोटाश।
3: एक कट्ठा में 1 kg डीएपी देते हैं।
2: हाँ।
3: और पोटाश मैंने उसके आधा देते हैं, आधा kg। बायोजम भी आधा kg।
2: अच्छा
3: और मिला करके हम लोग रोप देते हैं 40 दिन के बाद।
2: हाँ।
3: और यह खाद छिड़ते हैं तो हरियाली पूरे हो जाता है।
2: जैसे आप बता रहे हैं कि यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं, तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, बरसात का मौसम है, अगर बारिश हो रहा है, आपका धान का खेत में पानी भरा हुआ है, तब भी आप यूरिया खाद छिड़काव करते हैं कि क्या इसके पहले कोई उपाय करते हैं?
3: नहीं, पानी जब बहती रहेगी तो हम लोग यूरिया खाद नहीं मारते हैं। पानी समतल रहेगी, खेत में रुकी रहेगी, उसके बाद खाद मारते हैं।
2: अच्छा,
3: तो हमारे कमजाब में आता है वो खाद बहता नहीं है, मेरा खेत से दूसरे खेत में नहीं जाएगा।
2: अच्छा, और जैसे है कि

0: और जैसे आप दवा छिड़काव कर रहे हैं, तो जैसे हम हमारे बहुत किसान भाई हैं जो दवा छिड़काव करने के समय जो है मुंह में तौलिया बांध लिए या चश्मा पहन लिए, काहे कि जैसे हम कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं तो शरीर में जो चींटी उखड़ने लगता है या खुजली होने लगता है, आंख में पड़ गया तो नुकसान करता है। तो इससे बचाने के लिए आप क्या क्या सावधानी रख
1: ये तो अपना पढ़ने के लिए हम लोग तौलिया ऐसे करके कर लेते हैं, अनाक करके हम लोग छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, तो कितना दवा और कितना पानी मिलाते हैं, मात्रा क्या रखते हैं?
1: 10 ml हम लोग दवा देते हैं, तो 10 लीटर का जो है उसका भार डबल कर देते हैं पानी,
0: हाँ,
1: और उसके बाद छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, 10 लीटर पानी में 10 ml दवा आप डालते हैं, उसके बाद उसको बढ़िया तरीके से घोल लेते हैं,
1: हाँ
0: तो उसके बाद छिड़काव करते
1: हाँ
0: हैं।
1: उसके बाद मशीन से हम लोग छिड़काव करते हैं।
0: अच्छा, मशीन से छिड़काव करते हैं।
1: हाँ
0: तो जैसे बारिश का समय है, बारिश हो रहा है, तो कौन सा समय बढ़िया होता है, सुबह का समय में कि शाम के समय कि दोपहर, कौन समय में आप बढ़िया छिड़काव कर लेते हैं ताकि धान को अधिक लाभ मिले?
1: छिड़काव हम लोग सुबह शीत झड़ने के बाद तुरंत हम लोग मारते हैं, ताकि 1 घंटा भी धूप मिल गया
0: हाँ,
1: तो मेरा दवा सेट कर गया।
0: अच्छा,
1: 1 घंटे बाद पानी भी पड़ेगा तो कोई नुकसान नहीं है, दवा
0: अच्छा,
1: मेरा कामयाब हो जाएगा।
0: हाँ, तो जैसे कि कौन कौन सा किस्म का आप धान लाए हुए हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में देखेंगे कि पहले लोग देहाती धान लगाते थे, अब क्या है कि लोग सब हाइब्रिड धान लगाते हैं, तो हाइब्रिड में भी जो चुनाव कहते हैं जैसे गहरा हो गया, तरखा हो गया, इस तरह से, तो आप कैसे चुनाव करते हैं कि हमको गहरा में तरखा में कौन सा किस्म का धान लगाना है?
1: हमको 1 लम्बर जो होता है वो पानी रहता है वो खेत में, तो 1 लम्बर का धान लगाते हैं, पनियर 64-44,
0: हाँ,
1: और कावेरी 1 लम्बर में लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: दूसरा लम्बर में दूसरा कावेरी लगाते हैं, धनिया लगाते हैं, और IA-64 लगाते हैं।
0: अच्छा,
1: IA-64, शुक्ला-64, ललाट हो गया, ये सब
0: हाँ,
1: लगाते हैं तीन
0: यानी कि
1: नंबर
0: जो है हमारे किसान भाई जो है इन किस्मों को जो है गहरा तरखा इस तरह से जो है जहां जरूरत हो उसके हिसाब से लगाना चाहिए। तो जैसे आप धान लगा दिए, रोपाई कर दिए, दवाई वगैरह भी बीमारी आता है तो छिड़काव करते हैं, तो और क्या क्या देखभाल करना होता है हमारे किसान को धान लगाने के बाद?
1: हाँ उसमें जैसे आगे रोपा हो गया तो उसमें घास भी हो गया तो घास का दवा भी डालते हैं, उसको नहीं दवाई डालें तो उसको थोड़ा घास को मेहनत करना पड़ता है, निकालना पड़ता है।
0: जैसे बारिश नहीं हो रहा है, धान सूख गया, तो कितना दिन में पटवन करना चाहिए?
1: उसका नामी जड़ पूरा हाल रहना चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, सूखेगा तो नीचे से कीड़ा काट देगा तो मर जाएगा, इसलिए उसको पानी 2 तरसों रहनी है।
0: अच्छा, और आपके बात को जो सुन रहे हैं जो किसान है खेती बाड़ी करते हैं, कुछ किसान है कि खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो उनको आप एक संदेश के रूप में, उनको क्या संदेश देंगे एक संदेश के रूप में कि आज के किसान भाई मेहनत करें, कैसे खेती बाड़ी करें?
1: देखिए किसान भाई हम तो कहते हैं कि सब किसान फसल को कीजिए, और फसल से हमारा गुजर जाता है, बाजार में जाता है, 2 रुपया होता है, बिकता है। हर फसल कीजिए, कोई फसल नहीं, धान कीजिए, गेहूं कीजिए, चना कीजिए, सरसों कीजिए, पालक कीजिए, मूली कीजिए, गाजर कीजिए, सब फसल कीजिए, और ये फसल बाजार में यानी कि बेचिए, 2 रुपया होगा अपने घर में, तेल साबुन का भी बच जाएगा, अपना घर घरेलू खर्चा भी हो जाएगा।
0: यानी कि जो है हमारे किसान भाई को खेती बाड़ी करना चाहिए ताकि जो है अपना घर का जो है पूर्ति कर सके और आमदनी भी हो सके, और जो है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो खेती बाड़ी ही जो है पर हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो निर्भर है। तो सेवा रजक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, इतना बढ़िया जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो देखा ये बुजुर्ग किसान हलथिन और बड़ा बेस जो है से जानकारी दिलथिन कि हम इनके किसान भाई बहन जो है से धान की खेती कैसे कर सके थे और हम इनके धान के किस्म के चुनाव कैसे करे के भाई।
3: हाँ
2: देखा गहरा में कौन धान के लगाना हो, तरखा में

0: कौन लगाना है, कितना बार जोत कोड़ करना है। तो देखा कि अपन अनुभव के ही साझा कर रहे थे, हल्थिन सेवा रजक
1: और इनकर से बातचीत कर रहे थे उमेश रजक। अब देखा कि एक किसान के अपन अनुभव के बाद चलो ये तनी सुन बाजार दने।
0: हाँ हाँ।
1: और आज के बाजार भाव जानो ये।
0: बिल्कुल। आज के बाजार भाव रहले हो, देखा लाल आलू जो है 20 से 25 रुपए प्रति किलो रहले है, सफेद आलू हो 20 से 22 रुपए प्रति किलो, प्याज के बाजार भाव रहले है 30 से 35 रुपए प्रति किलो, और फूल गोभी हो 35 से 40 रुपए प्रति किलो।
1: वहीं पत्ता गोभी की बात करिए तो पत्ता गोभी है से 25 से 30 रुपए प्रति किलो।
0: हाँ।
1: पटल 25 से 30 रुपए प्रति किलो। भिंडी 25 रुपए किलो। नेनुआ, अगर नेनुआ भी है से कई किस्म के है।
0: हाँ।
1: लेकिन एक साधारण एक देखिए बाजार भाव तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो है।
0: अच्छा।
1: कद्दू है से 25 से 30 हाँ। रुपए प्रति किलो।
0: देखा कि हरियर मरचा के अगर
1: बात हो, हरा मरचा भी है से एकदम भाव एक चढ़ा
0: हाँ,
1: लो भाई।
0: बिल्कुल।
1: अब धर के समय में देखा कि हरा मिर्चा हो से 120 रुपये किलो चले थो।
0: हाँ हाँ
1: और वह शिमला मिर्च हो से 50 से 60 रुपये हो।
0: बिल्कुल। देखा ना कि गाजर भी जो है से बड़ी बाजार में अभी देखबा के महंगा चले तो।
1: हाँ।
0: एकर में कहा है कि वह 35 से 40 रुपए किसान भाई बहन जो है से बढ़िया मुनाफा ले रहे थे।
1: हाँ।
0: अब बीट के बात करा तो बीट भी जो है से 50 से 60 रुपए प्रति किलो है।
1: हाँ।
0: बीन जो हो अभी जो है नवा नवा बीन निकले तो
1: हाँ।
0: वो देखबा ना कि 50 से 60 रुपए किलो चल रहे लो।
1: हाँ।
0: मुराय जो है से 25 से 30 रुपए किलो।
1: और वही देखा धनिया पत्ता की बात करिए।
0: हाँ हाँ।
1: धनिया पत्ता देखा कि हम इनके हजारीबाग से बहुत अच्छा मात्रा में निकलो है। लेकिन अबधर के समय में एकरो है से भाव बहुत आगे रहो है।
0: हाँ।
1: तो अबधर है से 140 से 160 रुपए किलो बिक रहे धनिया पत्ता।
0: बिल्कुल।
1: आलू भी थोक में।
0: हाँ हाँ देखा ना कि हम इन अगर बात करिए खीरा के।
1: हाँ।
0: तो वो भी जो है से 30 से 40 रुपए प्रति किलो है।
1: हाँ।
0: और लाल साग हो पालकी साग हो वो जो है से 30 से 35 रुपए किलो चल रहे हैं।
1: हाँ।
0: अगर हम इन मौसम की बात करिए, आज के जो है से अधिकतम तापमान रह ले हो 28 डिग्री सेल्सियस।
1: हाँ।
0: और न्यूनतम तापमान रह ले है 23 डिग्री सेल्सियस।
1: हाँ। और आज के जो आर्द्रता है मौसम में नमी है।
0: हाँ हाँ
1: वो 82% है।
0: अच्छा।
1: और काल भी मौसम ऐसे रहे के संभावना हो।
0: बिल्कुल। तो देखा कि इस तरह से हम इन कार्यक्रम में जो है किसान भाई बहन के अपन मौसम के और बाजार भाव बतवे है।
1: हाँ।
0: और देखा कि जो है हम इनके किसान भाई बहन हथिन ने कि डेयरी जो है फार्म भी चलवो थी।
1: हाँ।
0: और वो जो है से डेयरी उद्यमिता विकास योजना है।
1: हाँ।
0: देकर में जो है हम इन किसान भाई बहन के कहो कि भाई देखा तो इन खातिर ले बड़ी ऐसा योजना चलावल गए है।
1: हाँ।
0: जेकरा लाभ लेवे के चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अब
1: देखा कि सबसे बड़ा चीज है कि झारखंड सरकार भी ऐसे
0: हाँ।
1: एक प्रोत्साहन दे रहे सब किसान भाई बहन के कि भाई दूधवारू गाय है से आदमी लेते तो ओकर में बढ़िया सब्सिडी है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: अगर डेयरी उद्यमिता विकास के देने से योजना देने से लेते
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ओकर से है सब्सिडी है ओकर में है से 50 से लेकर के 100% तक सब्सिडी है। और एकर में भी सब्सिडी है से अलग अलग कैटेगरी
0: के
1: हिसाब से बांटल गेल है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि देखबा कि कोई रहलो विकलांग रहलो।
0: हाँ हाँ
1: कोई एकदम निशक एथी रहलो।
0: बिल्कुल।
1: तो उ सबके अलग अलग है से उ सबके सब्सिडी देवल जा है।
0: हाँ हाँ
1: और जैसे जनरल रहलो जकरा है से एक योजना के लाभ लेवल चाह रहा है।
0: हाँ हाँ
1: तो ओकरा 50% तक ले सब्सिडी एकरा मिल रहा है।
0: और एक बात और देखा कि डेयरी फार्म चलावे खातिर ले भी जो है से आवास मिल रहा है।
1: आवास मिला है। और एकर में देखबा कि पशु शेड।
0: हाँ पशु शेड भी जो है से दे रहे है।
1: हाँ।
0: पशुपालन विभाग से दे रहे है।
1: हाँ।
0: तो कहीं ना कहीं देखा ना हम इनके किसान भाई बहन के हम इनके पशुपालक भाई बहन के
1: हाँ।
0: सिर्फ जो है से जागरूकता के जरूरत हो कि कौन योजना के हम इनके समय पर कैसे ओकरा लाभ उठावे के है।
1: तो जरूर है कि डेयरी उद्यमिता विकास मिशन जो है
0: हाँ।
1: एकर में भाग लेकर के अपन आप करके लाभ पहुंचे थी। और देखा कि जे किसान है से जेकर इनकम बहुत कम है।
0: हाँ हाँ
1: जे बीपीएल
0: परिवार से आओ। हाँ।
1: तो उस सब के है से ओकर लिए बहुत ही बढ़िया योजना है।
0: बिल्कुल। तो देखा प्रशांत भाई अब हम इन कार्यक्रम किसान वाणी से अब जाए के भी बेरा हो गया।
1: हाँ हाँ।
0: तो कहे ना कार्यक्रम किसान वाणी से हमरा उमेश के
1: और प्रशांत के अनुमति देती।
0: जोहार
1: जोहार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, अब आइए सुनते चलते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: तो देखा भाई, अब हम जो है आज के कार्यक्रम खेती बारी में जो है हम फिर से हाजिर ही है। देखा कि फिर से बतियाबे अपन किसान भाई बहन के साथ है और उनका देखा कि मनोरंजन भी करे बन। आज जो है गीतनाथ भी लेके ले है और जानकारी भरल बात भी बतियाबे।
1: तो देखा कि उमेश के संगे प्रशांत भी बनल है कार्यक्रम में खेती बाड़ी में। सबके फिर से एक बाजी प्रणाम करो ये और सबके जोहार है। तो उमेश भाई, देखा कि अब धर के समय में अगस्त के महीना आवे वाला हो,
0: हाँ
1: जुलाई है से लगभग समाप्ति पर है। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसन में है कि हम इनके किसान भाई बहन हथी जो खेती बाड़ी भी कर रहा थी,
0: हाँ
1: सब्जी भी उगा रहा थी,
0: हाँ हाँ
1: बाजार भी देख रहा थी,
0: हाँ
1: अपन स्वास्थ्य भी देख रहा थी, अपन पशुधन के भी स्वास्थ्य देख रहा थी
0: बिल्कुल।
1: और ओकर पर है से अपन व्यवसाय भी चला रहा थी।
0: अब देखा एकर भी एक बात कहल चाहबे न कि अबधर जे समय चल रहे लो
1: हाँ
0: किसान भाई भी देखा कि फलदार पौधा लगावे के बहुत बेस समय चल रहे लो।
1: बिल्कुल, देखा कि फलदार पौधा हो गलो चाहे
0: हाँ
1: लकड़ी नुमा पौधा हो गलो,
0: हाँ हाँ
1: यानी कि पौधा लगवे के
0: बिल्कुल
1: वो अभी के समय में बहुत बढ़िया समय हो। यही समय के किसान भाई बहन इंतजार करो थी
0: हाँ
1: कि भाई गर्मी जब पूरी तरह से तप जाए,
0: हाँ
1: जब वो
0: हाँ
1: गड्ढा खोल ले रहो थी यार, महीना डेढ़ महीना दो महीना होकर मेरे समय बीत जाए और
0: बिल्कुल
1: अंदर के जितना भी कीड़ा मकोड़ा है एक तरह से गड्ढा उपचारित हो जाए
0: हाँ सही
1: और वो
0: बात
1: माटी उपचारित हो जाए,
0: हाँ
1: ओकर
0: हाँ
1: बाद लगवे के समय आवो है पौधा। तो
0: बिल्कुल
1: पौधा लगवे के अनुकूल समय रहो है, अबधर के मौसम में है से हल्का है से ठंडापन रहो है, हल्का गर्माहट रहो है और
0: बिल्कुल
1: जमीन है से नमी बनल रहो है।
0: हाँ हाँ
1: एकरा से हुए कि पौधा के मरे के शिकायत
0: ना
1: ना
0: हो
1: रहे और
0: बिल्कुल
1: जड़ है से बहुत जल्दी पकड़ ले है।
0: हाँ हाँ
1: तो इस समय है से एकदम बिल्कुल पौधा लगावे के अनुकूल है। तो पौधा लगावे के लिए किसान भाई बहन जी हथी
0: हाँ
1: वो अबधर पौधा लान के रख ले हथी। तो अबधर के समय में है से जे मिट्टी है जो सड़ा हुआ गोबर है
0: हाँ
1: या फिर केचुआ खाद है ओकरा में है से मिट्टी मिला करके सब बराबर कर देती और पौधा के लगावे के बाद, पौधा तो देखा गड्ढा पहले ही बतावे लिए कि फलदार पौधा है तो 2x2 गड्ढा खोद थी।
0: पहले एक सप्ताह
1: हाँ
0: पहले जो है से
1: कम से कम 2 महीना पहले
0: हाँ
1: वो मई महीना में ही है से गड्ढा कोड़ देवल जाए
0: हाँ
1: ताकि मई महीना की गर्मी से है वो धूप से पूरा है से गड्ढा उपचारित हो जाए और
0: बिल्कुल
1: ओकर से जो माटी निकलल है
0: हाँ हाँ
1: वो माटी है से उपचारित हो जाए और वो माटी के तोरा है से फिर आधा गड्ढा में पहले
0: हाँ भर
1: भर
0: देना
1: देना हो। ओकर बाद है से जो खाद वाला मट्टी है
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: तोरा है से तो पौधा रखे के लगावे के बाद वो है से गड्ढा में वो मट्टी से तोरा मिला करके भरना हो, खाद और मट्टी दोनों मिला करके, ताकि ऊपर के मिट्टी जो है से पूरा बढ़िया फुलुक रहे और पौधा के जड़ है से जल्दी है से फैले ओकर में और जमीन के पकड़ ले।
0: बिल्कुल सही बात कहला भाई। देखा अभी का है कि भाई नींबू शरीफा अमरूद ये सब जो है से कटहल ये सब जो है ना किसान भाई बहन के व्यवसायिक रूप से भी लगा सको थी। बहुत हम के किसान भाई बहन हथुन के भाई टाँट टिकुल खाली हो तो है ओकर में जो है से केला लगा दा आम लगा दा अमरूद लगा दा तो देखबा कि तोहरा जैसे एक तरह से अगर तैयार हो गलो अमरूद फल गलो। देखा अभी अमरूद में बाजार में देखबा ने भाई कि 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे। शरीफा निकल तो लेम्बो देखा कि अभी 10 रुपया में 2 गो बिक रहे। तो जे किसान भाई बहन जो है से बागवानी तेरे

0: लगावे थथिन।
1: हाँ।
0: तो देखा कि उनकर खेती ले बढ़िया है।
1: बहुत अच्छा बात कहला भाई कि अबधर के समय में नींबू की खेती जो है
0: हाँ
1: वो बहुत है सो उम्दा है और बहुत फायदेमंद है।
0: बिल्कुल
1: गर्मी के समय में नींबू के भाव इतना बढ़ जाए
0: हाँ हाँ
1: कि तुहरा मतलब कि है से एक नींबू 10 रुपया के बिको लगो है।
0: बिल्कुल
1: कखनो कखनो तो एक नींबू 20 रुपया के 40 रुपया जोड़ा बिको है।
0: हाँ सही बात।
1: तो ई है नींबू के फायदा। फरतो तो भाई एकदम पूरा घौ दिनियर फरतो पूरा गाछ ऐसे एकदम भरभरा जाए एकदम
0: हाँ हाँ,
1: नींबू से।
0: बिल्कुल।
1: और जखनी है से आमदनी दियो लागो तखनी। लेकिन अबधर के समय बरसात के समय में थोड़ा सा नींबू के दाम है से
0: ऊपर हाँ,
1: भी गिरावट आओ है। कहे कि इस समय से फलवार जो में नींबू में फल बहुत ज्यादा पकड़
0: हाँ,
1: ले
0: हाँ,
1: तो खूब फल होए के समय। लेकिन ऐसा है नींबू के भी अलग अलग ऐसे किस्म है। अगर नींबू है से बढ़िया किस्म के लगावल जाए तो है से साल में ऐसे 2 बार भी फल हो है।
0: कोई
1: नींबू सालों भर फरते रहो है।
0: हाँ, हाँ,
1: तो ये चीज है ध्यान में रख के किसान भाई बहन अगर नींबू की खेती करती तो यहाँ पर हम इनके है से ऊसर जमीन है। ऊसर
0: हाँ,
1: है बहुत ज्यादा है से एकदम उपजाऊ ना है।
0: हाँ,
1: तो उस जमीन पर नींबू के बढ़वार बहुत बढ़िया हो। तो
0: देखा कि एगो किसान हती भाई कि 250 नींबू लगे लेते भाई और उड़ीसा से जो है से वो नींबू के किस्म मांगे लेते और अबधर कह लेते कि एक गछवा में कम से कम जो है से 200 से 250 लगल है। तो देखा कहीं देखवा ने कि बहुत बेस है। तू जो है से रोज जो है से तोड़ के ओकरा बिक्री कर सको।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है।
0: हाँ।
1: बहुत सा किसान हथी जे है से नींबू की खेती करके आमदनी कमा रहा थी। देखवा कि लोहर दगा दनी हो गलो।
0: हाँ हाँ।
1: और फिर अलग अलग जगह में जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है
0: हाँ हाँ।
1: जहाँ पर जंगली क्षेत्र है वहाँ पर देखवा नींबू की ज्यादा खेती कर रहा।
0: एक बात और देखवा ना प्रशांत भाई
1: कि
0: अबधर हम इनके गाँव में किसान भाई बहन का कर ले थो कि मुनगा के काट काट के रोकरा लगा ले तो पहले काट देते
1: अच्छा
0: पानी जगह
1: अच्छा
0: रख दा
1: हाँ।
0: पानी जगह रख दा वो जो है नजुक गेलो ओकर बाद अभी रोपाई करता।
1: हम
0: देखा कि हमू 5 गो गाछ लगे लियो है। तो देखा कि का है कि मुनगा के साग जो है तोहरा खाए खाती ले तोहरा बर बीमारी में भी बहुत काम आओ।
1: बहुत काम आओ है
0: तोहरा
1: छाल हो गलो मुनगा के साग हो गलो मुनगा के फूल हो गलो मुनगा के सीटी हो गलो यानी कि मुनगा जड़ से लेकर के फूल तक पूरा तू खा सकल है।
0: बिल्कुल देखा कि हम इनके जो है ये सब गाछ के लगवे के चाहे।
1: बिल्कुल
0: देखा कोनार के गाछ हो गए कोनार के गाछ लगे ला ओकर साग जो है से कई तरह के फायदा करो है।
1: हाँ।
0: तो देखा हम इनके ना कहीं कहीं ऐसा चीज के लगावे के चाहे ताकि जो है अबधर कई तरह के बर बीमारी आ रहा है
1: अभी देखवा ना
0: तो कोनार काम आ जाए।
1: हाँ, बिल्कुल कोनार के साग देखवा कि हम इनके पूरा बोन भरल हो।
0: हाँ बोन भरल हो
1: एकदम कोनार। लेकिन का कर रहे थे कि बोना धीरे धीरे काटते काटते कोनार रो लगे छे काटते काटते ऐसे अपन व्यवसाय के भी अथी करते थे कमजोर करते थे।
0: हाँ हाँ।
1: पहले बोन से आदमी है जो सालों भर अपन जीविकोपार्जन कर ले है।
0: बिल्कुल
1: देखवा की कनौदक समय कनौदा बेचो लगल हो
0: देखा
1: पत्ते के समय पत्ते बेचो लगल हो दतुन के समय दतुन बेचो लगल हो तोरा की बीड़ी पत्ता हो तो बीड़ी पत्ता बेचो लगल हो तो तोरा है से बोन में से फुटका बिक रहा जामुन बिक रहा आम बिक रहा महुआ बिक रहा
0: सब देखा जंगले से हम इनके।
1: लेकिन वह जंगलिया के उजाड़ के एक समय
0: हाँ।
1: आज ऐसे देखा कि बेघर हो रहा थी
0: हम
1: इनके जानवर भी बेघर हो रहा थी हम इनके आदमी भी ऐसे रोजगार ढूंढे ले जब जे सालों भर जंगल में रह करके अपन कमाई कर ले थी और जीविकोपार्जन कर रही थी आज वो जंगल से निकल करके बाहर मजदूरी कर जा रहे।
0: एक बात और कहल चावल कि जैसन के तू अभी कहला ने हम इनके जे जंगल काट ले थे भाई देखा कि जे हम इनके जंगली जानवर हो गए तो वो देखा कि गांव तरफ आ रहे थे ये सुनबा कि केकरो घर गिरा दल को तो केकरो बाउंड्री गिर गलो
1: हाँ।
0: तो केकरो खिड़की उजार दिलो तो कहीं ना कहीं देखा ये हम इन्हीं के देवल है।
1: बिल्कुल
0: अगर हम इनके अभी भी समय है भाई कि देखा हम इनके जंगल नए काटे के चाहिए
1: हाँ।
0: जंगल में देखवा कि सियार हो तो लोमड़ी हो तो हरिन हो
1: हाँ।
0: तो जो है से हाथी हो तो बाघ हो तो इस सब के रहे खातिर भी जो है से जंगल बहुत घर के काम करो है।
1: बिल्कुल
0: अब हम इन जंगल काट देवे जंगल में आग लगा देवे महुआ के चक्कर में
1: हाँ।
0: तो देखा कि वो सब कहाँ जीते।
1: बिल्कुल
0: वह
1: कि एक खामियाजा आज भुगतल पड़ रहा हूँ साहब के देखवा ने कि आज ऐसे जंगल के लकड़ी हलो ने आज हाँ। प्लास्टिक के रूप ले लो
0: प्लास्टिक के रूप ले लो।
1: अब प्लास्टिक में देखो फर्नीचर हो सब प्लास्टिक के लग हाँ। लो घर में
0: सही बात।
1: अब लकड़ी है तो सोना का भाव हो गए कैसे यह कारण हो गए कि अब तू बोना रह देला है तब प्लास्टिक वे पर काम चला और पूरा ऐसा जीवन ऐसे अपन बर्बाद कर ला के समय में।
0: देखा कि अबधर जो लकड़ी मिल भरल हो तो एकदम महंगा सोना के भाव में
1: हाँ वह कहे थी।
0: तो कहीं ना कहीं देखा हम इनके अबधर भी समय है ये जो मौसम चल रहा है देखा बरसात के मौसम में हम इन जो है से लकड़ी महंगा शीशम हो गलो तो तू जो है से सागवान हो गलो ये सब भी लगवे के जरूरी
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल लगा सका थी
0: हाँ।
1: अगर देख ला है कि जहाँ पर हम इनकी खेती योग्य जमीन नए है जहाँ पर खेती हम नए करिए
0: आर्टिकल हो
1: ऐसा जगह पर जरूर है से एकदम
0: हाँ।
1: पौधा लगा करके अपन पर्यावरण के समृद्ध करती और आगे चल

0: करके वही जे पर्यावरण के जे लकड़ी अगर तो तैयार हो तो
1: वह
0: जो तुहर बनवल जे लगवल जे तैयार हो तो आगे चल करके तुहर बाल बच्चा के धरोहर बन जितो।
1: बिल्कुल, देखा हम इनके जे बाप दादा लगेल थीन से आज हम इन ओकरा खाती है।
0: हाँ,
1: और हम इन लगेबे से देखवा की जे है से नाती पोता खेता तो
0: बिल्कुल
1: तो कहीं ना कहीं देखा ये उतारल है। हम इनके किसान भाई बहन के सब छोट छोट बात के किसान भाई बहन भी जानो थी भाई।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन का है कि भाई छोट छोट बात के जो है से ध्यान न
0: नजरअंदाज कर दे
1: नजरअंदाज कर दे थी। तो कहल चाहबन के देखा अब धर बढ़िया समय है हम इनके जो है लगावे के चाहिए गाछ वृक्ष फलदार पौधा लगवे के चाहिए। देखा के जो है अब धर आम खाए रहल थी गाँव के तो कहीं ना कहीं देखा बाप दादा लगेल थी ओकरा हम इन आज
0: तबे ना सही बात है
1: हम इन लगेबे तो फिर नाती पोता खेती।
0: बिल्कुल,
1: तो ई बात के ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: तो चलो हम इन अपन बातचीत के आगे भी जारी रखबे अब धर ले चलो ये जरूरी संदेश देने और गीतनाद देने।
1: बिल्कुल,
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखा कितना बेस गीत हम इन किसान भाई ने सुन लिया, आशा कर ले कि उनको बेस लग ले होते
1: बिल्कुल।
0: और अब देखा कि हम इनके जैसे जानकारी के देने चले के चाहिए, देखा कि पशु बीमा जो है ओकर जे योजना है तो एकर जानकारी हम इनके किसान भाई बहन के पशुपालक भाई बहन के भी रखे के चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: देखा
1: कि
0: बड़ी महंगा महंगा गाय पालो थी भाई, देखा लाख रुपया के तो बड़ी सुनबा के 1,20,000 के गाय हो, 40,000 दूध देवे थे तो 20,000 देवे थे, तो कहीं न कहीं देखा हम इनके इतना इतना जो है पूंजी के गाय रखो ये तो ओकरा जो है से बीमा भी कराना बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है, ये खातिर है कि हम इनके पशुधन बीमा के लाभ जरूर लेक चाहिए।
0: हाँ।
1: ताकि हम इनके पशुधन के कोई तरह की अगर क्षति हो जाए
0: हाँ हाँ।
1: तो ओकर है से हम इनके मुआवजा के रूप में है से बीमा के लाभ मिल जाए हम इनके।
0: हाँ हाँ। तो
1: ये खातिर है बीमा अपन पशुधन के जरूर करिए।
0: बिल्कुल,
1: तो ये आगे हम इन जानकारी रख ली है कि अब धर के समय में किसान जो बरसाती पत्ता गोभी फूल गोभी की जो नर्सरी करल थी है
0: हाँ हाँ।
1: वो अपन खेती कर जाए थी
0: बिल्कुल,
1: तो कैसे वो अपन खेत बारी में वो तैयारी कर ले थी, कैसे वो देखभाल कर रही थी, कैसे लगा रही थी, एक
0: हाँ
1: बारे
0: हाँ।
1: में कमल प्रसाद थी
0: और इनकर से बातचीत कर ले थी प्रशांत कुमार,
1: तो सुनल जाए जानकारी भरल बातचीत।
0: बिल्कुल सुनल जाए।
2: श्रोताओं, हम आए हुए हैं ग्राम हेतलाग में और हमारे सामने एक युवा कृषक हैं जो अभी बरसाती फूलगोभी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय। जी आपका नाम?
3: कमल प्रसाद कुशवाहा।
2: कमल प्रसाद कुशवाहा,
3: ग्राम हेतलाग का रहने वाले हैं।
2: हाँ हाँ, तो कमल जी आप हैं सो बरसाती फूलगोभी का खेती कितने सालों से करते आ रहे हैं?
3: पत्ता गोभी और फूलगोभी का लगभग 5-6 साल से हम करते हैं।
2: 5-6 साल में आपने जो बरसाती फूलगोभी और जो पत्तागोभी का खेती करते हैं उसमें क्या आप मुनाफा देखे हैं?
3: उसमें तो बहुत अच्छा हमको लगा।
2: हाँ,
3: 10 से 12 रुपए भी केजी रहता है ना, फिर भी हम लोग का पूंजी रिटर्न आ जाता है
2: जी।
3: फूल गोभी में हाँ। होता है 25-30 तक ले भी चल जाता है
2: जी, उसका रेट चला जाता है,
3: रेट चला जाता
2: तो
3: है।
2: इस हिसाब से ये मुनाफे की खेती है। बरसाती फूलगोभी और पत्तागोभी की खेती कितने पैमाने पे होती है पूरे क्षेत्र में, ज्यादातर किसान करते हैं या कम किसान कर पाते हैं?
3: बहुत अधिक सा किसान करते हैं, ये नावाटाणा हो गया, हिजलाग हो गया, अब मियातू हो गया, इस सब में लगभग हम कहते हैं कि 20 से 25 ट्रक माल सप्लाई करते हैं
2: जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं?
3: इसकी तैयारी अभी तो लगभग गाछी तो तैयारी तो हो गया है, उसको रोपने के लिए
2: हाँ।
3: अब तैयार कर रहे हैं खेत का।
2: अच्छा, तो तैयारी में क्या किए आप?
3: अभी ऐसे उसको जोत करके छोड़ दिए हैं, उसके बाद में पानी गिरेगा, उसका बाद में उसको तैयार करेंगे,
2: वो मतलब खेत जहाँ लगाना है गोभी को वहाँ। तो नर्सरी की देखभाल के बारे में आपसे जानेंगे कि अभी किसान भाई अगर जो लगाए हुए हैं या फिर ये बरसाती फूलगोभी की तैयारी करेंगे तो वो किस प्रकार से करें ताकि ज्यादा बढ़िया नर्सरी तैयार हो?
3: देखिए, बात ऐसा है कि फर्स्ट में जो हम लोग है आधा कट्टा जमीन में हम लोग कहे सो
2: हाँ।
3: उसको गोबर डालते हैं, गोबर डाल करके उसको जोतते हैं, जोत करके उसको

0: अच्छा से मतलब कि प्लेन करके उसको गाछी को होते हैं, एक को करके उसको है सो बो देते हैं।
1: ये मतलब बीजा को है सो कि दूरी का ध्यान रखते हैं या फिर है
0: एक इंची का दूरी रहता है,
1: एक इंची का दूरी,
0: एक इंची का जैसे बोते हैं ना तो उसका एक इंची का दूरी रहता है जिसमें गाछी कबाड़ने के लिए हमको सहूलियत हो गए।
1: तो ये मतलब कि दूरी रखना जरूरी होता है,
0: जरूरी होता है,
1: इससे ऐसे गाछी भी तैयार बढ़िया होता है और निकालने के समय भी आसानी होती है,
0: आसानी होती है। उसका साथ में मिट्टी भी साथ में आता है ना तो उससे जल्दी पौधा लगता है। और मिट्टी झड़ जाने के बाद में वो पौधा ऐसे मर जाता है।
1: तो सारे पौधे तो आप लाते होंगे तो हाइब्रिड ही किस्म के होंगे?
0: हाइब्रिड का लाते हैं।
1: तो हमें ये बताएं कि जब आप बाजार से लाते हैं यहाँ जमीन तैयार करके रखे हुए नर्सरी के लिए, तो बुआई की बात करते हैं, बुआई आप ऐसा कोई समय होता है बोने का कि मतलब कभी भी बो सकते
0: हैं? नहीं, उसका तो समय मतलब कि तो उसको सुबह शाम बोने के टाइम रहता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब कि गाछी आप लगाइए तो सुबह में लगाइए या तो फिर शाम में लगाइए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो अभी आप नर्सरी के बारे में बताएं कि आपका जो नर्सरी है कि पौधा जो निकला है कितना कितना बड़ा हुआ है? अभी
0: अभी तो ज्यादा नहीं हुआ है, एक इंची का, एक इंची का,
1: एक इंची का हो चुका है। तो अब उसमें क्या देखभाल करना है आपको?
0: अब उसको देखना है कि कीड़ा लग रहा है कि क्या हो रहा है, उसके लिए है सो दाना छिड़काव, दवा छिड़काव करने के लिए हमको एक्टिव होना।
1: हाँ, मतलब कि उसमें है सो देखते रहना है कि ताकि अगर कोई तरह का रोग व्याधि उसमें आ रहा हो तो उससे पहले है सो दवा का छिड़काव कर दें। तो आपका जो नर्सरी है कितने दिन में तैयार हो जाता है?
0: वो 20 से 25 दिन में हम लोग रोप देते हैं।
1: 20 से 25 दिन में है गाछी निकाल देते हैं और उसके बाद रोपाई होती है। रोपाई का क्या तरीका है, कैसे रोपते हैं आप?
0: रोपने का तरीका यही है कि जगह जगह पर मतलब कि कोड़ी से कोड़ करके हल्का हल्का उसी में है सो डालते जाते हैं और रोपते जाते हैं और पानी भी देते चल जाते हैं।
1: जैसे जमीन की तैयारी होती है बरसाती गोभी का या बरसाती फसल लगाने का, तो एक ढलान जमीन तैयार करते हैं लोग या वैसे टाड़ वाले इलाके में करते हैं।
0: उसका मेड़ बनता है।
1: अच्छा,
0: मेड़ बनता है तो वो मेड़ पर रोपा जाता है।
1: मेड़ के नीचे रोपते हैं या ऊपर वाला में?
0: ऊपर में,
1: ऊपर वाला में,
0: ऊपर में। और मेड़ के नीचे रोप दीजिएगा तो वो तो गल जाएगा।
1: हाँ,
0: वो पानी उसमें रहेगा तो वो गल जाएगा।
1: कहने का मतलब है कि जो बरसाती फसल होते हैं उसमें पानी निकास का जो है व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए।
0: हाँ,
1: ताकि वहाँ पर पानी है सो संग्रहित ना हो और पौधे को नुकसान ना करे। तो इस हिसाब से आप है सो पौधे को ऊपर लगाते हैं, ज्यादातर किसान ऊपर ही लगाते हैं। तो इससे है सो आपका जो अनावश्यक पानी है वो बाहर निकल जाता है और जितना जरूरी है वो पानी अपना रहता है। तो आप लगाते हैं, तो लगाने के समय आप क्या क्या खाद का इस्तेमाल करते हैं?
0: उसमें खाद में डालते हैं DAP डालते हैं
1: जी,
0: और फोरेट डालते हैं।
1: हाँ हाँ,
0: और बायोजैम देते हैं
1: उसमें, बायोजैम भी देते हैं,
0: बायोजैम देते हैं।
1: और ये सब है सो दे करके आप है सो बुआई करते हैं उसकी?
0: हाँ, रोप देते हैं,
1: रोप देते हैं। आप दूरी कितना रखते हैं इसका?
0: उसका दूरी रखते हैं 1 से 1.5 फीट के दूरी में रखते हैं कि जिसमें एक दूसरे को पत्ता नहीं सटे।
1: हाँ हाँ,
0: वो सटने से फिर उसका है सो
1: विकास
0: फसल मतलब कि वैसा नहीं होगा,
1: इसलिए मतलब 1 से 1.5 फीट की दूरी रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी।
0: पौधे के
1: लगभग ये कितने कट्ठे में आप लगाते हैं गोभी को?
0: 10 कट्ठा में लगाते हैं।
1: 10 कट्ठा में लगाते हैं। ये तो प्रत्येक वर्ष आप गोभी का?
0: हाँ, हर साल लगाते हैं
1: जी। हर साल आप है सो लगभग 10 कट्ठे में खेती करते हैं और इसमें मुनाफा ही आप देखते आए हैं।
0: हाँ,
1: तो इस हिसाब से आप
0: 40 से 45 हजार रुपया हम कमा लेते हैं
1: उसमें, एक सीजन में जो गोभी आप लगा देते हैं। तो उसके बाद है सो क्या क्या देखभाल आपको करना पड़ता है
0: उसमें? देखभाल करना पड़ता है जब गोभी हो जाने के बाद में हल्का सा जब लग जाने के बाद में उसको खुरपाई कर देते हैं।
1: हाँ,
0: उसके बाद में हल्का सा यूरिया डालते हैं
1: जी,
0: उसको है सो फिर पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद में थोड़ा सा कुछ और बड़ा होता है तो उसको चाल देते हैं। चालने के बाद में उस पर मट्टी डाल देते हैं, उसमें है सो DAP डालते हैं और बायोजेम सब डाल करके उसको तैयार करते।
1: तो कितना बार खुरपाई की आवश्यकता होती है गोभी में?
0: उसमें एक मर्तबे खुरपाई करते हैं,
1: एक बार खुरपाई करते हैं
0: और दूसरा मर्तबे मिट्टी चढ़ा करके उसको पास देते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो मतलब एक बार खुरपाई कर देना है फिर छोड़ देना है उसको, उसके बाद है तो फिर मिट्टी चढ़ाने वक्त उसमें खाद का जो आप बताए कि यूरिया बताए बायोजैम दे करके उसको ऐसे मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसकी खुरपाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खरपतवार जैसे उगते हैं अगल बगल तो उसका निवारण कैसे करते हैं?
0: उसके लिए एक तो दवा आता है वो उसको डाल देते हैं हम लोग
1: जी। तो फसल लगी फसल में उसको डालते हैं या खेत की तैयारी
0: लगी फसल में?
1: तो फसल को नुकसान नहीं,
0: कोई दिक्कत नहीं होता है, घास खत्म जला देता है
1: और बाकी फसल को कोई नुकसान नहीं,
0: कोई नुकसान नहीं।
1: तो अब बताइए कि अगर बीच बीच में है तो कीड़े तंग करते हैं जो गोभी को छेद करके अंदर घुस जाते हैं, पत्तगोभी को भी परेशान करते हैं या फिर फूलगोभी को नष्ट

0: करते हैं, वैसे कीड़ों से बचाव के लिए आप क्या करते हैं?
1: उसमें डालते हैं, रिमोट डालते हैं और करंट डालते हैं।
0: रिमोट और करंट?
1: करंट,
0: ये दवाई है?
1: ये दवा है।
0: तो ये दवा डालते हैं तो इससे है सो कीड़ों से बचाव हो जाता है। कितने दिनों के अंतराल तक ये चलता है? ये
1: 15 से 20 दिन तक ले खींचता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: दवा उसका बाद में फिर देखते हैं कि कीड़ा तो आ नहीं रहा है क्या।
0: हाँ हाँ।
1: तो देखते हैं कीड़ा नहीं आता है, फिर भी एक मर्द पे और मार देते हैं बीच में।
0: तो ये कीड़ों से बचाव के लिए 20-20 दिन पर है सो आप है सो इन दवाओं का प्रयोग करते हैं
1: और बीच में दे देते हैं इंडो फिर 45 दे देते हैं।
0: हाँ।
1: उससे क्या होता है कि हरा भी रखता है और फूल भी
0: बढ़िया
1: अच्छा रहता है,
0: तो इसका भी प्रयोग करते हैं। तो अब विशेष देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो फसल है पत्तगोभी और फूलगोभी का, ये कितने दिनों तक में तैयार हो जाते हैं?
1: ये तो 65 से 70 दिन में फूलगोभी तैयार हो जाता है और 75 से 80 दिन में
0: पत्ता गोभी तैयार होता है। तो आप बाजार इसका आप जाते होंगे बेचने के लिए या फिर है सो आपके व्यवसायी जो आते हैं लेने के लिए?
1: नहीं, तो ये तो हजारीबाग और यहीं से पिकअप आ जाता है, प्लस ट्रक भी आता है, उसमें लोड घर से उठा करके ले जाता है।
0: जो भी बेचने की प्रक्रिया होती है वो आपके खेत से ही उठा करके सारे ले जाते हैं?
1: उठा लेता है।
0: आप खुद जा करके बेचते नहीं?
1: नहीं।
0: अगर खुद से बेचते तो ज्यादा मुनाफा होता है या खेत से जाता है तो मुनाफा होता है?
1: दोनों में होता है।
0: दोनों में होता है?
1: दोनों में।
0: दोनों में विशेष अंतर नहीं है?
1: नहीं।
0: तो कमल जी, आपने अपनी पत्ते गोभी और फूल गोभी की खेती के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो देखा ये हलथिन कमल प्रसाद और कितना बढ़िया बात बतलथिन कि भाई फूल गोभी और पत्ता गोभी के नर्सरी और खेती कैसे कर जा सको है। इनखर से बातचीत कर लेते प्रशांत कुमार।
3: तो यह जानकारी भरल बातचीत के साथ कार्यक्रम खेती बारी से अब अनुमति लेवे के समय हो गए है।
2: हाँ, तो हमरा उमेश के
3: और प्रशांत के
2: अनुमति दा जोहार।

खेती बारी श्रोता, आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण देना निश्चित है। इसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज नगर भवन में दिव्यांगों के बीच 150 आधुनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया। लाभुकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों की सेवा ही नारायण सेवा है और सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मक्का की 65% से अधिक बुआई पर संतोष व्यक्त किया और बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रांची, जमशेदपुर और देवघर में आधुनिक मिलेट कैफे स्थापित करने के भी निर्देश दिए। खूंटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी रांची के अनुसार थाना प्रभारी ने एक मामले में राहत दिलाने के एवज में शिकायतकर्ता से 4.5 लाख रूपये की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते हुए आज उन्हें दबोचा गया। पाकुड़ के मुफ्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलभट्टा बाजार के पास पुलिस ने छापेमारी कर 313 ग्राम

0: अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार गौरव ने बताया कि छापेमारी के दौरान दूसरा आरोपी फरार हो गया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के पहले दिन अब तक करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का पावन जलाभिषेक किया। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर रूट लाइनिंग का जायजा लेते रहे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:00 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर श्रोता हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोता लीजिए पेश है कार्यक्रम युवाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले तमाम युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हमारे संग हो रही है इस कार्यक्रम में, जो कहती है तमाम युवाओं के दिल की कहानी यानी कि युवाणी। तो साथियों, बरसात की सुहानी शाम में आज हम आपके लिए लेकर आए कई खट्टी मीठी बातें, और साथ ही अपने साथ लेकर आए आपके लिए खास मेहमान, जो आज आपको सुनाएंगी अपनी प्यारी प्यारी कविताएं। साथ ही कुछ जानकारियां आज जरूर होंगी अपने युवा दोस्तों को स्ट्रेंथ करने के लिए, उन्हें अपडेट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब मुलाकात इस तरह हो, वो भी बरसात के सुहाने मौसम में और शाम का वक्त हो, तो क्यों ना हम अपने इस सफर की शुरुआत एक खूबसूरत से गीत के साथ करें। तो लीजिए, करीब आ जाइए अपने एफएम सेट के, आपके युवाणी की तरफ से आपके घर आंगन पहुंच रहा है ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद चलिए हम आपको लिए चलते हैं कुछ खास बातों की ओर। सच दोस्तों, सावन के आने से चारों ओर हरियाली फैल गई है, जीवन में उमंग और तरंग भर गई है। ऐसे में उमंग और तरंग को अपने साथ लिए चलिए गुनगुनाते हम आपको लिए चले उस डगर में, जहाँ कुछ बातें हैं सोचने की, समझने की और अपनी जिंदगी में अपनाने की। साथियों, मानव तस्करी आज हमारे देश दुनिया की एक बहुत जटिल समस्या है और धीरे धीरे ये बढ़ती ही जा रही है। लोगों को धोखा देकर उनसे देह व्यापार करवाना, लोगों को धोखा देकर, ठगी देकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर भीख मंगवाना, या फिर उन पर ऐसे कार्य के लिए दबाव देना जो कि उनके कॉन्शियस को, उनके जो द सेंस है उसको अलाउ नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनसे गुलामी करवाना, ये सभी मानव तस्करी के अंतर्गत आते हैं, जिसके संदर्भ में आप सभी जानते होंगे। लेकिन ये मानव तस्करी जो है आज हमारे समाज में इस प्रकार घर गया है कि आज कितने ही हमारे युवक युवतियां और लोगों का जीवन दुभर सा हो गया है। यही कारण है कि मानव तस्करी से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, मानव तस्करी में फंसे लोगों को, पीड़ित लोगों को राहत दिलाने के लिए 30 जुलाई का दिन पूरे विश्व भर में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। युवा दोस्तों, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव तस्करी की पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए की थी, और आज भी हम रेडियो के द्वारा आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव तस्करी में फंसे लोगों की मदद आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से इसके कानून हैं और किस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूरे विश्व भर में पहुंचाया है। युवा दोस्तों, मानव तस्करी दुनिया भर की एक जटिल समस्या है। इसी कारण 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प लेकर 30 जुलाई को आधिकारिक रूप में मानव तस्करों के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया, और मानव तस्करी करने वालों के खिलाफ कानून भी कई बनाए हैं। ये दुनिया भर में सरकारों और नागरिकों को आधुनिक गुलामी और शोषण के इस गंभीर अपराध को रोकने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। दोस्तों, कुछ प्रमुख रणनीतियां और पहल मानव तस्करी के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र ने उठाया है, चलिए बारी बारी से एक एक कर हम उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कार्य योजना, जिसे UNBIFT भी कहते हैं, UNGIFT जो तस्करी के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है और सरकारों की मदद करता है अपने यहाँ पे मानव तस्करी पर रोक लगाने में। UNODC ब्लू हार्ट अभियान, जो पीड़ितों की पहचान और तस्करों के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देता है और जन जागरूकता को बढ़ाता है। मानव तस्करी के खिलाफ एक और योजना हमारे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई है, वो है यूरोपीय संघ की तस्करी विरोधी रणनीतियां। यह संगठित अपराधों से को लक्षित करता है और सीमाओं के पार सुरक्षा को मजबूत करता है। इसी तरह एक और सुरक्षा नियम है मानव तस्करी के खिलाफ, वो है पाल्मो प्रोटोकॉल। मानव तस्करी को रोकने, दमन करने और दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्य

अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी इसके अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ICM ये सहायता कार्यक्रम जो है एशिया और अन्य देशों में फंसे पीड़ितों को सुरक्षित निकालना और उनकी मदद करना जैसे कार्यों को अंजाम देता है। इसके अलावा भी मानव तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के द्वारा US नेशनल एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं, स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड भी तैयार किए गए हैं, काउंटर ट्रैफिकिंग डेटा कोलैबोरेटिव भी तैयार किए गए हैं और साइबर फ्रॉड और स्कैम कंपाउंड के खिलाफ अभियान, ऑनलाइन धोखेबाजी के जाल में फंसाए जाने वाले पीड़ितों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। तो हम देखते हैं कि मानव तस्करी जो आज काफी बढ़ गया है, अक्सर आप देखते होंगे हमारे झारखंड राज्य से बहुत सारी आदिवासी बच्चियां जो है ले जाई जाती है काम के बहाने और वहां जाकर देश विदेश में देह व्यापार के लिए बाधित की जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ के युवा युवती हैं जिन्हें काम देने के नाम पर ले जाया जाता है, रोजगार के नाम पर ठग कर और फिर बाहर विदेशों में गुलाम बनाकर बिना पैसा बिना किसी फायदे से उनसे काम लिया जाता है। इन सब पर रोक लगाने के लिए मानव तस्करी के खिलाफ इन योजनाओं और इन रणनीतियां जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं इनकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए दोस्तों, और आपको ये जानकारियां अपने आसपास के लोगों के साथ भी साझा करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी फैले और जानकारी हमारी शक्ति बनेगी और इस तरह के मानव तस्करी पर रोक लगा सकेगी। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको जरूर समझ में आई होगी और मानव तस्करी के खिलाफ जो आज विश्व दिवस है इसको आप सफल बनाएंगे, एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमने आज आपसे बात की मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर और अब बारी है कि हम आपको मिलवा दें अपने आज के खास मेहमान से, लेकिन उससे पहले एक जरूरी संदेश आप सबके लिए।

सच साथियों, बरसात के दिन आ गए हैं और ऐसे में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह से तो बारिश कभी भी हो उठती है और चारों तरफ बस पानी भर जाता है। ऐसे में हमारी सरकार पानी की बचत के लिए, खासकर इस बरसात के पानी की बचत के लिए, एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है कैच द रेन। और इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं तैयार कर रही है। तो चलिए युवा दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये कैच द रेन एवं उनमें जन भागीदारी क्या है। साथियों बता दें कि कैच द रेन अभियान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान है, जिसका नारा है बारिश को वही सहेजिए जहां वो गिरे, जब वो गिरे। इस अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी का अर्थ है आम जनता, स्थानीय निकायों और समुदायों को जोड़कर पानी बचाने के काम को एक जन आंदोलन बनाना। अगर हम इसे टंकी बनाकर या पोखर बनाकर सेव करते हैं तो यही पानी हमें क्राइसिस के समय में, जल संकट के समय में काम आती है। इससे हम सिंचाई का काम कर सकते हैं, अपने कपड़े धोने के काम कर सकते हैं, अपने घर में और भी बर्तन धोने के कार्य कर सकते हैं, कई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। इससे भूमिगत जल का स्तर भी ऊंचा रहेगा और हमें जल संकट से कभी

0: तो दोस्तों गुनगुनाते अब चलिए हम आपको लिए चले एक संदेश के बाद अपने खास अपने मेहमान की तरफ।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: और अब इस संदेश के बाद चलिए युवा दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं अपने आज की मेहमान की ओर। और आज की मेहमान है हमारी शशि बाला, कवित्री, जो आपको सुनवा रही हैं तरह तरह की कहानियां, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी सूरज रजक।
7: कहाँ चला गया?

0: श्रोताओं, कविताएं वो माध्यम है जहाँ जीवन सहज सरल रूप से अभिव्यक्त होता आ रहा है। कविताओं को अगर जीवन से निकाल दिया जाए तो जीवन से रस निकल आएगा, तो कविताएं जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही कवयित्री हैं जिनका 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, शशि बाला जी हैं, लंबे समय से लिख रही हैं, तो आज इनसे बातचीत करेंगे, इनके काव्यात्मक जीवन पर बातचीत करेंगे। तो मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार
0: मैडम। जब एक कवि हो, कवयित्री हो, तो जब लिखना, जैसे आज आप इतना लंबा सफर आप तय करके आई, तो जब पीछे मुड़कर देखती हैं, जब शुरुआत का दिन था, तो जब लिखना आपने शुरू किया था, उन दिनों को याद करते हुए अगर कुछ अपनी बातें यहाँ से इस बातचीत की शुरुआत करें तो अच्छा लगेगा हमें।
1: जी, वैसे तो मैं बचपन से ही थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती थी। हाई स्कूल आते आते कुछ बाल कविताएं भी लिखी, एक तो रचना चन्ना मामा और नंदन में छपी, तब हौसला बढ़ा। फिर कॉलेज की पत्रिका में जब रचनाएं प्रकाशित हुई तब मनोबल और बढ़ा, लेकिन जैसी गति पकड़नी चाहिए थी वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर बैंक की नौकरी में आई, यहाँ आकर मेरे लेखन को पहचान मिली। गृह पत्रिकाओं में रचनाएं लगातार छपने

0: छंद तो किसी भी सृजन की आत्मा होती है। मेरे विचार से यदि कविता में अलंकार, लालित्य व गंभीरता है तो सीधे सीधे पाठकों के हृदय पर छाप छोड़ेगी। जीवित कविता सदैव अलंकार मांगती है। लिखते तो बहुत लोग हैं, लेकिन तो किसी किसी की कविता नीरस होती है, वह पाठक मन को छू नहीं पाती। बिना यति गति लय के कविता वैसी ही है जैसे निर्जीव निष्प्राण शरीर। अभिधा लक्षणा और व्यंजना कविता में जरूरी है। कविता तो हमारी संस्कृति का संवाहक है और एक अच्छी कविता लिखने के लिए समृद्ध शब्द कोश जरूरी है। मात्रा के हिसाब से कहाँ कौन सा शब्द फिट बैठेगा यह जानना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे धरती, धरा, भू, तीनों एक ही है, तीनों के अर्थ एक ही है, लेकिन मात्रा के हिसाब से जहाँ चार मात्रा का शब्द चाहिए वहाँ हम धरती लिखेंगे, जहाँ तीन मात्रा चाहिए वहाँ धरा लिखेंगे, और दो मात्रा के लिए भू लिखेंगे या मही लिखेंगे।
1: जब आप लिख रही थी, इतना लंबा समय आपका लिखते हुए लगा, तो कौन से ऐसे कवि थे या कवित्री थी जो आपको प्रेरित करते रहे, जिनकी रचनाएं आप आज भी पढ़ना और उन्हें स्मरण करना आपको ज्यादा अच्छा लगता है?
0: देखिए, मैं उस माहौल में पली बड़ी हूँ कि घर में बाबा तुलसीदास की चौपाइयों का वाचन होता था। सही मायने में रामचरितमानस से प्रेरित हुई बचपन में। जैसे जैसे बड़ी हुई तो हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, निराला, माँ देवी वर्मा जी, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ने का सौभाग्य भी मिला
1: जी।
0: यही हमारे आदर्श भी रहे। अब हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां देखिए जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, आपको सुनाती हूँ। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नव में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मगन रहो, बुलबुल तरुकी फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम मदिरा के प्याले देकर, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये पंक्तियां मेरी बहुत ही पसंदीदा हैं। ऐसे आज आभासी दुनिया में भी बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर मन खुश हो जाता है, जो बिना किसी प्रलोभन के साहित्य सेवा में जुटे हैं, जिनमें संजीव वर्मा सलील जी, ओम नीरव जी, त्रिलोक सिंह ठगुरेला जी और बहुत से रचनाकार हैं। इनमें एक नाम की चर्चा मैं विशेष रूप से करूंगी, श्रीमती अनुराधा पांडे। यही मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, मैं इन्हीं से सीखती हूँ। जहाँ पहले मैं सिर्फ और सिर्फ गद्यात्मक कविता ही लिखती थी, गद्यात्मक करने का अर्थ किसी एक लंबे वाक्य को तोड़कर छोटी छोटी पंक्तियों में लिखना, मेरी सभी पुस्तकें बस ऐसी ही लिखी हुई हैं। ये पढ़ने में सहज सरल होती हैं, हर वर्ग के पाठक की समझ को उपयुक्त होती हैं। एक छोटा बच्चा भी पढ़ समझ सकता है, लेकिन इतने से इसे कविता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। कविता के अपने कुछ नियम है, इसी के अंतर्गत दोहे, मुक्तक, गीत और सारे छंद आते हैं। अब आप अनुराधा जी की छोटी सी रचना देखिए। एक मुट्ठी ही सही पर प्रीति में आकाश ले लो, ये छंद वाली रचना, मात्रा वाली। एक मुट्ठी ही सही पर प्रीति में आकाश ले लो, क्या करोगे ले निखिल जग, एक छोटा सा निलय हो। मात्र जिसमें नित्य दिखते प्रेम पूरित दो हृदय हो। गीत गुंजित दिन निशा हो, छंद में अनुप्रास ले लो। एक मुट्ठी ही सही पर प्रीति में आकाश ले लो। साधना ऐसी चपल हो जो शिला को मौन कर दे, साधना ऐसी चपल हो जो शिला को मौन कर दे। एक सलभ हो, एक शिखा हो, मग्न जो तन होम कर दे। देवता हो नत गगन से, मोक्ष में अरदास ले लो। एक मुट्ठी ही सही पर प्रीति में आकाश ले लो।
1: मधुबाला जी, आप तो शुरुआत में ये बात कहें कि नंदन जैसी पत्रिकाओं में शुरुआत में आपको छपने का मौका मिल गया और उसके बाद लगातार छपती रही, लेकिन अपनी कविताओं का संकलन आपने कब प्रकाशित किया?
0: जी, मेरी पहली

0: पुस्तक 2015 में प्रकाशित हुई कविता संग्रह, इसमें कुल 51 कविताएं थी। उसके बाद 2018, 19, 20, 21 एक के बाद एक 4 पुस्तकें और प्रकाशित हुई। सभी की सभी कविता संग्रह ही हैं। फिलहाल कुछ विराम सा है, संग्रह तैयार है लेकिन पुस्तकें प्रकाशित नहीं करवा पाई।
1: नई पीढ़ी कविताओं से और गहराई से जुड़े, इसके लिए कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत है? अगर है तो क्या किया जाना चाहिए? आप क्या महसूस करती हैं इस बारे में?
0: देखिए, आज यह देखकर हर्ष होता है कि आभासी दुनिया ने कविता को विस्तार दिया है। आज स्त्रियां घर के कार्यों से निवृत्त होकर कलम उठा रही हैं। साथ ही अधिक संख्या में युवा वर्ग भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। किंतु चिंता का विषय यह है कि मंचों की चाहत व सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में उन्हें कविता की समझ उतनी नहीं है। कामना हो जाए साकार, तब तब उस पर ब्रह्म का करे हृदय आभार। और भला क्या है यहाँ इस जीवन का सार, और भला क्या है यहाँ इस जीवन का सार, अपने भीतर देखना उसका ही विस्तार, अपने भीतर देखना उसका ही विस्तार। इतिशु।
1: बहुत सुंदर। जब जब अपनी कामना हो जाए साकार, तब तब उस पर ब्रह्म का करे हृदय आभार। इतनी सुंदर बातें आपने की कविताओं के बारे में, सृजन यात्रा के बारे में, नवंकुरों के बारे में आपने बहुत सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद सर, आप सबको नमस्कार।
2: अभी आपने सुना शशि बालाजी से उनकी कविताएं, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी सूरज रजक, और देख रहे हैं युवा दोस्तों को। आपको अलविदा कहने का वक्त हो गया है, लेकिन दोस्तों इस बरसात में आप अपने शरीर का, अपने सेहत का खास ख्याल रखिएगा, ताकि सारे नज़ारे आपके हो और सारे बरसात की मस्ती आपकी हो। जाने से पहले आपके लिए ये संदेश।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

तो साथियों बारिश में भीगते रहिए और जीवन की मस्ती लेते रहिए। इन्हीं के साथ दीजिए अपने कार्यक्रम युवाणी से वंदना श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।

एफएम 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दोस्तों, भीगी हुई शाम के इस दहलीज पर बैठे हैं आपके दिल की धड़कन को सहलाने। सुनने वाले तमाम श्रोताओं को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, वक्त बदला है और बदला है दिल का मौसम, क्योंकि बदला है बाहर का मौसम। ऐसे इस बरसात के मौसम में आइए हम आपको भिगोते हैं कुछ ऐसे ही दिलकश गीतों की बयार से।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म हम आपके हैं कौन से। और लीजिए इस मौसम की जादू का और भी खूबसूरत नजारा इस गाने के संग आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है।

0: दोस्तों ऐसे ही गीतों की होगी बरसात, बस रहिए इस पल FM 92.1 MHz के साथ। हम मिलते हैं आपसे इस छोटे से संदेश के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: फिल्म संगीत ट्यून क्या है दोस्तों, आपने आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से, और आप सुन रहे इस पल दूसरा आदमी फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

देर में 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर होगा जिले में आजकल, जिन्हें हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, झारखंड के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का किया आग्रह। राज्य में एसआईआर के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या घटकर हुई 14,02,262। आगामी 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप सूची। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोकभवन का किया घेराव। कृषि मंत्री शिल्पिनी हत्तरके ने राज्य में मक्का की 65% बुआई पर जताया संतोष। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में खुलेंगे मिलेट कैफे। और देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन 80,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। अब से थोड़ी देर बाद भव्य ड्रोन शो और मातृत्व विश्राम गृह का होगा शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है, जिसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण देना है। इसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने पर 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को मजबूती देगा।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की 370 करोड़ की मांग के मुकाबले केंद्र ने महज 58 करोड़ रुपए जारी किए हैं। श्री सोरेन ने बताया कि एसटी वर्ग को इस वर्ष कोई राशि नहीं मिली और अल्पसंख्यकों का फंड 2021-22 से रुका है। उन्होंने शिक्षा बाधित होने से बचाने के लिए केंद्रीय अंशदान बढ़ाने का आग्रह किया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज नगर भवन में दिव्यांगों के बीच 150 आधुनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया। लाभुकों को संबोधित करते हुए दिव्यांगों की सेवा ही नारायण सेवा है और सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है।
2: नर्मल अगर दिव्यांग की सेवा हो सके, इससे बड़ी नारायण की सेवा नहीं हो सकती है कि जो लोग अपने से चलने फिरने के लिए मोहताज थे, आज उनके पास एक चलने फिरने का साधन है। और मैं उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन की इस पहल से हमारे दिव्यांग भाइयों का जीवन थोड़ा आसान होगा। और उनसे भी आग्रह रहेगा कि आपकी चीज है, आप अच्छे से रखेंगे तो ज्यादा दिन तक आपको सेवा मिलेगी।
0: राज्य में 5 अगस्त को एसआईआर के तहत प्रारूप

0: मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद छूटे हुए पात्र नागरिक नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अब केवल 5.3% यानी 14,02,262 मतदाता ही अनमैप्ड श्रेणी में बचे हैं। जेपीएससी और जीएसएससी में कथित अनियमितताओं और छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आजसू छात्र संघ ने आज रांची में लोकभवन का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लोकभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जहां छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आजसू विधायक लंबोदर महतो ने परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी प्रकरण में जो अनियमितता बरती गई है, सरकार इसकी सीबीआई जांच करावे और जो करोड़ों रुपए का लेन देन के मामला है, निश्चित रूप से ईडी से भी उसको जांच कराने का काम करे। आगे का रुख हम लोगों का सड़क पर उतर चुके हैं, सड़क पर उतर के आंदोलन हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। आगामी 10 अगस्त को हम लोग विधानसभा घेराव का भी काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि आप सीबीआई जांच करने का काम करो।
0: पीएमओ के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने आज खूंटी में पद्म भूषण कड़िया मुंडा से मुलाकात कर पीएम केयर्स फंड के कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि फंड में अब तक 19,013 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिससे अनाथ बच्चों और कैंसर पीड़ितों को आर्थिक व स्वास्थ्य सुरक्षा दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
3: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
2: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर एफसी सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
3: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
2: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
3: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मक्का की 65% से अधिक बुआई पर संतोष व्यक्त किया और बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने झारखंड मिलेट मिशन के तहत 22,700 से अधिक किसानों के पंजीकरण की समीक्षा की और रांची, जमशेदपुर एवं देवघर में आधुनिक मिलेट कैफे स्थापित करने के निर्देश दिए। खूंटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने महिला थाना प्रभारी सपना सुलेखा को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी रांची के अनुसार थाना प्रभारी ने एक मामले में राहत दिलाने के एवज में शिकायतकर्ता से 4.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किस्त लेते हुए आज उन्हें दबोचा गया। सरायकेला पुलिस की एसआईटी ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।
4: एक एसआईटी का गठन किया गया, चोरी करते हुए मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पे और 4 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, डिटेल देंगे ताकि उसका जो ओनर है वो लोग संपर्क करे। फिलहाल अनुसंधान हम लोग का जारी है।
0: देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां अब तक करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ पर जलाभिषेक किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरी बाबा नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी है।

0: देवघर में आज सावनी मेले के पहले दिन ही बाबा वैद्यनाथ धाम की आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा वैद्यनाथ का पावन जलाभिषेक किया। भीड़ प्रबंधन सुरक्षा को लेकर उपायुक्त और SP खुद मोर्चा पर डटे रहे। आधुनिक एवं सुविधाओं के 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। RL सराफा मुख्य उच्च विद्यालय में हाई स्कूल परिसर में हाईटेक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक इसके बाद शिवलोक परिसर में ड्रोन से का शुभारंभ किया जाएगा, जो कांवड़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आशीष कुमार कम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य में बारिश की कमी का विचलन घटकर 25% पर आ गया है, जिससे राज्य धीरे धीरे सामान्य मॉनसून की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 30 जुलाई तक राज्य में 372.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 5वें स्थान पर रहकर पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज के अलावा भारत के 2 अन्य एथलीटों यशवीर सिंह और रोहित यादव ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, झारखंड के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने का किया आग्रह। राज्य में SIR के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या घटकर हुई 14,02,262। आगामी 5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप सूची। JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में छात्रों का प्रदर्शन। CBI जांच की मांग को लेकर लोकभवन का किया घेराव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मक्का की 65% बुआई पर जताया संतोष। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में खुलेंगे मिलेट कैफे। और देवघर श्रावणी मेले के पहले दिन 80,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। अब से थोड़ी देर बाद भव्य ड्रोन शो और मातृत्व विश्राम गृह का होगा शुभारंभ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे सिमडेगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता।
1: सिमडेगा के व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मोटर दुर्घटना से संबंधित दावा याचिका, निःशुल्क कानूनी सहायता, साइबर अपराध, बाल विवाह, आशा एवं जागृति योजना आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वाहनों का बीमा कराने पर विशेष जोर दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि
2: बिना इंश्योरेंस के कोई गाड़ी नहीं चले, इसके लिए मैंने डीटीओ साहब को भी निर्देशित किया है कि आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे जिले में एक भी गाड़ी ऐसी न हो जो कि इंश्योरेंस के बिना चले। इससे जो परेशानी होती है वाहन मालिक को बहुत ही ज्यादा है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको इतना मुआवजा देना पड़ जा सकता है, उनके सामर्थ्य से बाहर है। गाड़ी खरीदना अलग बात है लेकिन मुआवजा देने की कैपेसिटी एक मोटरसाइकिल वाले के पास, एक छोटा सा ऑटो चलाने के पास नहीं रहती।
1: सिमडेगा जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। सिमडेगा के सदर अस्पताल में आने वाले 70% से अधिक मरीज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज करा रहे हैं। योजना के सिमडेगा समन्वयक दीपक कुमार ने बताया कि
3: सिमडेगा में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में होता है और जिला में एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर सभी बीमारियों का इलाज होता है। लोग ऐसा भी सक्षम नहीं है कि बाहर जाकर इलाज करा पाए। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड, अबुआ कार्ड, दोनों कार्ड से लाभ लोगों को मिल रहा है। दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सारे गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर आते हैं जो बाहर जाकर इलाज नहीं करा पाएंगे पैसा के अभाव के कारण। सदर अस्पताल में वो फैसिलिटी अभी है हमारे पास में, भी पेशेंट एडमिट होते हैं 70-80% लोग हमारे आयुष्मान से इलाज कराते हैं। आयुष्मान कार्ड आने के बाद में लोगों को इलाज होने लगा। आयुष्मान कार्ड से

0: ऑपरेशन सारे होने लगे हमारे अस्पताल में, सब सारी बीमारियों का लगभग लगभग इलाज होने लगा। इसके कारण से लोगों का पैसा बच रहा है, जिले में इस तरह से कार्य अच्छा हो रहा है, हम लोग को भी अच्छा लगता है कि लोग स्वस्थ हैं।
1: 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सिमडेगा वासियों ने इस युद्ध के वीर सैनिकों को नमन किया। इस युद्ध में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले सिमडेगा निवासी नायब सूबेदार राम रतन महतो ने बताया कि
2: मेरा नाम राम रतन महतो है। 18 वर्ष में यहाँ से लाइफ रेंजर में फर्स्ट पोस्टिंग हुआ। उसके बाद फर्स्ट लड़ाई लड़े सियाचिन ग्लेशियर में और सेकंड लड़ाई लड़े कारगिल में। हिम्मत के साथ युद्ध हुआ, मैं आमने सामने लड़ाई हुआ। मैं 29 आदमी को मारा 18 जून को, उसमें हमको सेना मेडल मिला है।
1: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सिमडेगा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। तय तिथि से पहले ही यह कार्य पूर्ण हो जाने पर जिला प्रशासन ने इस कार्य में शामिल सभी कर्मियों को इस उपलब्धि की बधाई दी है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
3: अभी आप सुन रहे थे सिमडेगा जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त संध्या के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम झनकार।

दोस्तों सावन आ चुका है और ऐसे ही सावन के गीतों के लिए ट्यून कीजिए FM 92.1 MHz। लीजिए कल की क्या अगली पेशकश।

कक्कर की आवाज में क्रिएचर 3D फिल्म का ये गाना दोस्तों आपने सुना झनकार में। लीजिए एफएम 92.1 मेगाहर्ट्ज़ आपके लिए लेकर आ रहा है झनकार की एक और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति।

ये तड़कता भड़कता सा गीत था फिल्म सिर उठा के जियो फिल्म से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम झनकार यहीं समाप्त होता है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए, शाम के 7:30 होने को है। पेश है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एसडी वर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा ये खूबसूरत से गाना लता मंगेशकर की आवाज में, और ये गाना हमने लिया है फिल्म चुपके चुपके से।

चुपके चुपके। साथियों, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना। सच में दोस्तों, बारिश और फिल्म इंडस्ट्री का एक खास नाता रहा है। जब भी बारिश हुई है, हर साल कोई नए गीत जरूर बने हैं। जमाने जमाने से गीत बनते रहे हैं बारिश और सावन पे, और इनमें से शायद ही कोई ऐसे गीत होंगे जो हमारे श्रोताओं के दिल पर रचते बसते नहीं हैं। तो आइए चलते हैं और आपको ऑल टाइम हिट्स में सुनाते हैं वो सदाबहार गीत जो आज भी बारिश का सिग्नेचर ट्यून माना जाता है।

श्री 420 फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे दोस्तों आपने एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम है ऑल टाइम हिट्स। और बता दें कि इस गाने को गाया था लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब ने। तो दोस्तों ऑल टाइम हिट्स में आइए अब बारी है एक और सावन की उस यादगार सदाबहार गीत की जिसे फिल्माया गया था अपने सुनील दत्त साहब पर और इसे साथ दिया था नूतन जी ने। तो आइए सुनते हैं मिलन फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना।

दोस्तों, आज बारिश और सावन की बरसात की धूम आपके एफएम पर, और इस धूम के साथ आपके साथ भीग रही है आपकी दोस्त वंदना श्रीवास्तव।

लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के लिखे बोल आप सुन रहे थे बरसात फिल्म का ये गाना। दीजिए हमारे कार्यक्रम में आके आगाज इस गाने को।

दोस्तों सावन आता है तो अपने साथ कई रंगीनियां लेकर आता है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री से वो गाना हम आपको सुनवाना कैसे छोड़ सकते हैं ऑल टाइम हिट्स में, जो कई जमाने से हमारे यूथ्स का, हमारे पीयर्स का सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा है। जी हाँ, आइए मंजिल फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते चलते हैं।

किशोर कुमार के गाए मंजिल फिल्म के इसी गाने के साथ दोस्तों ऑल टाइम हिट्स ये कार्यक्रम जो है उसका समय समाप्त होता है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत, नमस्कार। ऑल टाइम हिट्स आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के 7:58 हुए हैं। श्रोताओं, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जनगण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएमके सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएमके सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते

हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जनगणमन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाई। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृहमंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृहमंत्री सदन में आए और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहां नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी

0: बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लिपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एलके सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं न कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस की रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्रीय एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं लीजिए पेश है फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी चाहत।

हाजिर दोस्तों, चाहत की महफिल लेकर आप सभी को वंदना श्रीवास्तव का नमस्कार। लीजिए, सावन के आने की खुशी में आप सबके लिए चाहत का ये पहला फुहार हमारी गायकियों की ओर से।

1942 A Love Story. इस फिल्म का गाना आप सुन रहे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में, और इस गाने को पसंद करने वाले हमारे ढेर सारे श्रोता हैं जिनके नाम हम बताएंगे इस गाने के बाद।

दोस्तों 1942 आ लव स्टोरी के इस खूबसूरत गाने की फरमाइश की थी हमें हमारे पुराने साथी पंचमंत्री रोड से कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा शिरफान, शबाना फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू ने। इसी गाने की फरमाइश दोस्तों आपने भी की थी। आप मुबारक हुसैन, तबारक अमानत, शराफत, बिल्किस, कनीज, यास्मीन फातमा और शहनाज फातमा, जामा मस्जिद रोड, हजारीबाग से डॉली और जुनू ने भी सुना चाहा था परासी से इसी गीत को। हमने सुनवा दी आपकी पसंद की ये गीत और लीजिए अब आ रहा है अगली ये पेशकश।

जानी मेरा नाम इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में सुनना चाहा था। औरंगाबाद से हमारे साथियों ने राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और उनके परिवार के ढेर सारे साथियों ने खत लिखा था। खिरगांव माली टोला सीसी गाने के लिए हमें खत लिखा कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अनिकेत मालाकार, आदेश मालाकार और अरविंद मालाकार ने। दोस्तों आपकी फरमाइश कर दी पूरी और ये अगला खत

या मेरी जिंदगी में आना यूं लगे जैसे तपती रेत को बारिश की बूंद मिल गई हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गाना। और बता दी दोस्तों कि इस गाने की फरमाइश की थी सियारी सिंदूर से डबली बबली सोनिया और कुशाग्र लाल ने। और इसी गाने को सुनना चाहा था बड़का काना से डॉक्टर अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना और उनकी प्यारी बिटिया तस्नीम ने।

दोस्तों इसी गाने की फरमाइश की है चेपा कला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर सबिया ठाकुर तिलेश्वरी भरत ठाकुर मंजू संतोष विकास और प्रभात ठाकुर ने आपकी भी फरमाइश हमने कर दी पूरी।

दोस्तों चाहत की महफिल सजी है इस वक्त आपके खतों से और आपके खतों के जरिए आए संदेशों से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गाना इस ख्वाहिश के साथ कि मेरा दिल तेरा है और तेरी जिंदगी की हर सांसें मेरी है। लो हम और आप एक हुए।

लता मंगेशकर की आवाज में मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गाना दोस्तों आप सुन रहे हैं अपने एफएम पर। और इस गाने के लिए हमें खत लिखा बहुत सारे साथियों ने। ये है इंदिरा विहार रायगढ़ से, अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम वली नूरजहां और उनके परिवार के सभी साथी। राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान आसमा और इरफान आसमा ने भी सुना चाहता है इसी गाने को। और दोस्तों जेल रोड रामगढ़ से इस गाने के लिए हमें खत लिखा रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिमा तिवारी, जेल रोड रायगढ़ के आप हैं साथी। आपकी भी फरमाइश कर दी हमने पूरी।

आज भी किसी पल के किसी की याद में बह रही है, जैसे आकाश से सिमट कर बूंदे धरती पर गिर रही हो। आप सुन रहे ये गाना राहत फतेह अली खां की आवाज में।

सावन की फुहार किसी के लिए बहार तो किसी के लिए आंसू भराता है उनकी यादों को लाकर। दोस्तों, इस गाने को हमने लिया है ओम शांति ओम फिल्म से, हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर। ये है डम्भाडी हार्ली से उमेश चंद्र पांडे, शंभू, अनिल, साकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता, अपूर्वा और उनके परिवार के समस्त पांडे परिवार। इसी गाने की फरमाइश हमें की है ग्राम धुरवा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नियुक्त राम साहू, भवेंद्र साहू और उनके ढेर सारे साथी। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने लिखा था इस खत को इस गाने के लिए। आज 10 साल चलते चलते आपकी चाहत की महफिल रोशन हो रही है इस गाने के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सुनिधि चौहान और कुमार शानू की आवाजों में ये गाना हमारे इन दोस्तों की पसंद पर सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कबरुल्ला नसीम आयशा हदिया खान आसमा सालिया सोएब खान और उनके रव भाई ने सुनना चाहते इस गाने को गांधीबाग अकेला से। इसी गाने की फरमाइश की थी छत्रपति संभाजी नगर से राजदीप राजेश राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। दोस्तों इसी गाने को सुना चाहता मुंबई से सिद्धांत गवानकर प्रणीता गवानकर और उनके ढेर सारे साथियों ने। आपकी भी फरमाइश हमने कर दी पूरी। तो दोस्तों आज की महफिल आज की चाहत की यही सिमटती है। दीजिए वंदना श्रीवास्तव को इजाजत इस वायदे के साथ कि अगली महफिल जल्द सजेगी आपके ही खतों और जज्बातों से। नमस्कार।

आपकी चाहत आप सुन रहे थे FM 102.1 MHz पर। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र FM 102.1 MHz पर रात्रि के 8:41 होने को है। श्रोताओं, थोड़ी देर में 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक और रात्रि 9 होगा न्यूज @9, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
1: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे

0: कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
1: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
2: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नागरिकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
3: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
4: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है, जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
6: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपये पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33,13,00,000 घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10,58,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Rajya Sabha, the discussion is underway on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, moved the bill. Chairman C.P. Radhakrishnan said that 7 hours have been allocated for the discussion on the bill. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. We have more from a correspondent.
9: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha today approved the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Rajya Sabha had passed the bill yesterday. After approving the legislation, the lower house was adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Rajya Sabha is discussing the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, which was cleared by the Lok Sabha yesterday. The Lok Sabha today faced adjournment as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this disruption, question hour and zero hour in the lower house could not be taken up. In Rajya Sabha, both question hour and zero hour went on smoothly. With Suparna Saikia, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
8: Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CSS, to review the situation in the context of the ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments. Addressing the meeting, Mr. Modi called for a unified and coordinated mechanism for regular monitoring of all developments.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं।
1: तुझे तक तक तक तक ते रहना, तेरी बक बक बक सुनते रहना।

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

0: प्यार का।
1: सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

इसके बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

0: से खोया हूँ।
1: सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छा,
1: प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
2: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: क्वेश्चन नंबर 21।
4: प्रश्न संख्या 121, क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
2: ऑनरेबल मिनिस्टर
4: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
3: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
2: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
3: थैंक यू सर। विल द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बी प्लीज्ड टू स्टेट वेदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर एंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम सभास, वीमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन planning and implementation. Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports. Whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development and finance for biodiversity conservation. The expected...
2: Constantine ji, be specific about your question. Okay. So long question, then come to the specific question, please.
3: Okay.
2: Carry on.
3: The monitoring mechanism proposed to prevent duplication of expenditure and improve accountability. Thank you, sir.
5: Sir, the member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the World Health Fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, the State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more

0: than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sangar Rao Chavanji.
2: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport Gram Sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
0: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprised 23 national biodiversity targets and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit, the concerned community, which is the question is raised by the particular government. Yes.
1: Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
3: एनवायरमेंट तथा बायोडाइवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडाइवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय. बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडाइवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडाइवर्सिटी हम कर सकते हैं. तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडाइवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है.
1: Honorable Minister.
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है, वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।

0: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
2: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
0: Dr. Mansukh Mandviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है, कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
4: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस will impact workers eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
3: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट ने हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो
5: और इसके लिए

0: एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट एसीएस आईसी के लाभार्थी नहीं थे, ईपीएफओ में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ईएसआईसी के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा, 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिलाकर हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
2: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है, वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदले और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया आप वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल

0: इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए ताकि जिसको जॉब चाहिए वो जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग VDA पर डे वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस है बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी? एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, 3 क्लासिफिकेशन दी है, A, B and C। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है ताकि देश में सभी नागरिक

0: अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
2: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 year once और 3 year once और 2 year once रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में 2 बार VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
3: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास से बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल लेबर और स्किल लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने कि अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको, माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना USA 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेस पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेस पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है

0: तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ। भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
2: 124
3: प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है। और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: आनंद मिश्रा
3: रक्षा निखिल खडसे युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री
2: टल पे रखा है।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
2: अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे। लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
5: शुक्रिया चेयरमैन सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उकसा रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है, मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस

0: से एडिक्शन बढ़ रहा है। एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, 2 दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है। और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो, ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
2: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहोगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6 लाख से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
4: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है, क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराब

0: भी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़ कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चोरे चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग कई समस्या है। उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125,
5: प्रश्न संख्या 125। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
3: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?
3: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं। महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते है सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने का, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में
1: वो मेटर्निटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मेटर्नल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हम एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहे हैं, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ा ही नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ा ही नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसका आंकड़ा किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लेकिन इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसके कारण है अलग अलग सर। हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं, अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं। वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसी में 40% महिला है सर। हमको बोलने के लिए कुछ होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर। इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए, एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
3: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
7: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
1: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के और ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे। उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी।

0: सिक्योरिटी कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किए हैं सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और एनी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर, ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना है ना, उसका सुरक्षित के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री का तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट फॉर फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर, एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
2: माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ई श्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं, ई श्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
3: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है, महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया, पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया, ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है, मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया है सर। थैंक यू।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
4: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
5: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है। ख, आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है। ग, उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ, उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
6: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया है, थैंक यू।
1: दे फर्स्ट सप्लीमेंट।

0: मंत्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी.
1: थैंक यू सर. ऑनरेबल मिनिस्टर, व्हाइल रिप्लाई इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, इट डज नॉट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ द लीगल असिस्टेंस प्रोवाइडेड. सो माय पिन पॉइंट क्वेश्चन टू यू, हैज द गवर्नमेंट अंडरटेकन एनी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड, इंक्लूडिंग सक्सेस रेट, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी?
2: ऑनरेबल मिनिस्टर.
3: धन्यवाद सभापति जी. माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चा हुआ, कितने लोग लाभार्थी हुए, ये जवाब इनको दे दिया गया है. मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है. ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं. जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं. डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं. जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे. ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं. इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए. धन्यवाद.
0: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंडिया जी.
4: थैंक यू चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए?
0: ऑनरेबल मिनिस्टर.
3: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज है, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का वो अनुवाद जान सकते हैं. लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है. ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है. भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे. धन्यवाद.
0: The House stands adjourned to meet at 2 PM.
5: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के

0: night. India holds the 8th spot in the Commonwealth Games medal with 15 medals, including 3 gold, 9 silver and 3 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 102.1 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती हमारी आज की ये सभा। बताते चले श्रोताओं कि कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः हाजिर होंगे अपने केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।